शरीर नु तोलेन नाल मनते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्हें दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा भी तुम्हें दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: रोज
1: अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभाव नहीं बदलता। सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वह मनुख सहजे कर लें, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वह करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लगे उसनु उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदे, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहने निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर। इस तरह हजूर कहते ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहते

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा समझो एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नु सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां दी पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ दी पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा। लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावा, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे इह तीन साधन ने। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार दे च इह तिन्ने मौजूद ने। इह ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोख है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना है। मंग के लोड़ा की पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्हां नूं बकायदा नाम दिते ने। जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नूं मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा,

या छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंठ। धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, तो जब निकलती है उत्थे इस दियां 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगों जाके इकट्ठे हो जाते। दरिया की शकल अगे चल के बनती है, छोटिया छोटिया धारा। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, ये बहुत सारिया धारावां दे च बगदा है और अगे जाके इकट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इन्हां दे च और सन्यासियों के कई कई रूप, बैरागियों के कई कई रूप, ब्रह्मचारियों दी कई कई शाखा। फिर जितने इष्ट ने उतनिया धारावां ने, किसी का इष्ट शिव, किसी का श्री राम, किसी दे श्री कृष्ण। ये धारा मेल भी नहीं खांदी। एक आम मनुख दी ते गल छड़ो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत, लेखक, विद्वान महात्मा तुलसी, जैसे मथुरा दे च आए रामायण दी कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण दी है, जिवें अयोध्या श्री राम दी, जिवें अमृतसर नूं असीं रामदासपुरी कहिंदे आ। रामदासपुर नाम भी पहले यही सी। गुरु रामदास जी की नगरी है, अयोध्या राम की नगरी है, बनास शिवां की नगरी है, मथुरा कृष्ण की नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हां नूं कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारकाधीश मंदिर विच। सारिया ने डंडौत की, तुलसी ने नहीं की थी। तुलसी ने नहीं की थी। पूछा गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं, भगती का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं, तुसी बहुत वड्डे विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की, मत्था नहीं टेकया। तो हुण जो कुछ तुलसी कहिंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं तुहाडे सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छबी है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है। ऊंटा नाल मुरली लाई हुई है, सिर ते मुकुट है, बड़ी सुंदर पोशाक है, बड़े कीमती गहने ने। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनशबान होए हाथ। तुलसी दा सिर ते तां झुक सकदा है जे हाथ दे च धनशदान हो, धनशबान होवे। मैं धनशधारी दा पुजारी हां, मुरली धर दा पुजारी नहीं। इहदे हाथ ते मुरली है। मैं अर्ज करां, मुहम्मद साहब ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता उन्हां सारिआं दा इक्को ही नाम है, मुसलमान। मुसलमान महात्मा बुद्ध ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता उन्हां सारिआं नूं कहिंदे ने भिक्षु। भिक्षु और धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता उन्हूं आखिया जांदा है सिख, गुरसिख, गुरु दा सिख। सिख वेदां शास्त्रां उपनिषदां दे राहीं

भाई रामे जी ने भी बनाया। गुरु अमरदास जी महाराज टहलते हुए भाई रामा जी पास आए ते कहन लगे, तू थड़ा बनाया? हाथ जोड़ के कहन लगा, हां महाराज ए थड़ा है, बना दिता है। महाराज कहन लगे, ए थड़ा साडे बैठन दे लायक नहीं है, इनू ढा दो। भाई रामा कहन लगा, मेहनत ते मैं बहुत कीती है, ढंग नाल बनाया है, पर पातशाह पता नहीं आप नू क्यों नहीं पसंद आया, सो आप दा हुक्म है तो हुण मैं ढा देना। इसे तरीके नाल गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा जी पास गए ते आखण लगे, पुरखा थड़ा तेरा भी किसे कम दा नहीं, ढा दे। हाथ जोड़ के भाई जेठा जी कहण लगे, पातशाह मैं भुलण हार जो होया, छोटी मत वाला जो होया, छोटी सोचनी जो सी, हुण होर आप कृपा करो, बख्शिश करो, मेरी सोच मेरी मत वधे, ताकि मैं आप जी दे बैठन लाए थड़ा बना सकां। वाकई मैं आप जी दे बैठन लाए थड़ा नहीं बना सकया, मैं ढा देना बादशाह। दूसरे दिन साहिब गुरु अमरदास जी महाराज फिर भाई रामा जी पास आए ते रामा थड़ा बना के बैठा से, बड़ा खुश से भई हुण मैं काबले दी ते बड़ा सोना ही थड़ा बनाया है, साहिबा नूं पसंद आएगा। पर गुरु अमरदास जी महाराज ने देखदिआं सारे कह दिता, है थड़ा नहीं किसे कम दा, इटहा दा, इगरा दा। भाई रामा जी दे मन विच इकदम ख्याल आया कि गुरु अमरदास जी महाराज वडेरी उम्र दे हो गए, अनहोणियां गल्लां करदे ने, पर जद हुण गुरु ने गुरु पिता ने ते जद हुक्म कीता है तो ढा देने आ, पर अंदर मन इनकारी है, अंदर मन बागी हो चुका है, निमूजड़े जिया मन नाल कहण लगा, अच्छा पातशाह बनाया तो मैं बहुत वधिया बहुत वधिया, पता नहीं आप नूं क्यों नहीं पसंद आ रहा, पर हुण आप कहिंदे हो तो मैं ढा देना। इसे तरीके नाल गुरु अमरदास जी महाराज भाई जेठा जी पास गए ते कहण लगे, पुरखा थड़ा तेरा भी किसे कम दा नहीं। हथ जोड़ के भाई जेठा जी कहिंदे ने, बार बार बख्शत हो मोही, गुनागार अपराधी को ही। हे पातशाह, मैं बार बार भूल करदा, तुसी बार बार मैनू बख्श दो, मैं बार बार गलती करदा, तुसी बार बार नजरअंदाज कर दो, हुण मेहर वरतानी बख्शिश करनी, मैं चंगा बना सका, मैं इगरा देना, पातशाह वाकई आप दे बैठन लायक नहीं। अज तीजे दिन जद सतगुर निरीक्षण करन आए ते देखदिआं सार भाई रामे नूं कह दिता, थड़ा ढा दे नहीं किसे कम दा, ते रामा जी कहण लगे, नहीं किसे कम दा ते ना सही, नहीं बैठना ते ना सही, पर मैं ढाणा नहीं, किसे कीमत ते नहीं ढाणा, तुसी बैठो चाहे ना बैठो। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज अगे चले गए भाई जेठा जी पास, उत्थे भी यही फिकरा दोहराया, जेठा जी तोड़ दे थड़ा, ये साडे बैठन दे लायक नहीं है। ता एकदम भाई जेठा जी कहन लगे, हां वाकई महाराज ये आप जी दे बैठन दे लायक कित्थे हो सकदा, मैं निमाणा, मैं छोटी मत वाला पातशाह, मैं इतना महान थड़ा कित्थे बना सकदा जिसते आप विराजमान हो सको, मेहर करो, बख्शिश करो, मेरी मत महान होवे ते मैं उस ढंग दा बनावा जो आप नूं पसंद आवे। कई लेके जो ढाण लगे तां गुरु अमरदास जी ने गलवकड़ी च ले लिया, आख्या, नहीं जेठा जी थड़ा बन गया, तू थड़ा बना दिता, असी हुण इसे ही थड़े ते बैठांगे, भोलिया सानू मिट्टी दे थड़े थोड़ी चाहिए सन, ते मैं ते हिरदे दा थड़ा वेख रहा सी, तो थड़ा बन गया, तेरे हिरदे दी बनतर हुण इस ढंग दी बन गई है, आईंदा तो दुनिया देखेगी कि तेरे हिरदे दे सिंघासन ते गुरु नानक दी जो विराजमान है, थड़ा बन गया, सिंघासन बन गया। इस तरीके नाल आप नूं
ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ

कर शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संग जीओ बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां दा बख्शिश कीता अज दा हुक्मनामा। ये चार पदियां दे चै, चार चरणां दे चै, चार पैरियां दे चै। किसे एक केंद्री ख्याल नूं, किसे एक मरकजी ख्याल नूं बार बार चार पैरियां दे, चार चरणां दे, चार पदियां दे दोहराया गया। इहदे च प्रथम पंक्ति अक्सर चौपदियां विच अगर रहाओ ना होवे तो फिर पहली पंक्ति ही सिरलेख है, सिरमौर है, अनुमान है। युग चारे धन जे भवे, इहदे च चार युगां दा मेरे पातशाह ने जिक्र कीता है। अर्थ करन तो पहले थोड़ा जिहा मैं इस दा जिक्र कर दें। युग बदल देने समय देच, युग बदल देने शरीर देच, युग बदल देने मन देच। युग दी तब्दीली तीन थावां ते हुंदी है। मन दी दुनिया च युग बदल देने हर युग मानसिक अवस्था है। युग बदल देने तन दी दुनिया देच, तन दी अवस्था है युग। ते युग बदल देने समय देच, वक्त देच, और निर्धारित समय देच युग दी तब्दीली हो जाती है, युग दा पलटा हो जाता है। पहली गल। दूसरी, युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, पशु पक्षियां दी दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च नहीं। युग सिर्फ मनुखां दी दुनिया च बदल देने, सूरज चंतारियां दी दुनिया च नहीं। सिर्फ युग दी तब्दीली मनुखी जीवन विच असी देख सकते हैं, बाकी सब कुछ कायनात विच ओही चलता रहिंदा है। लखां करोड़ां साल पहले जिहड़ा सूरज सी अज भी होई है, लखां करोड़ां साल पहले जिहड़े तारे सन अज भी होई है, ये धरती भी होई है, ये सागर भी होई है। प्राचीन तो प्राचीन ग्रंथां विच भी गंगा दा जिक्र है, जिहड़ी हजारां लखां साल पहले सी अज भी होई है। इस नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज रामकली राग विच इस तरह बयान भी करदे ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपतर है साधर तीसा पवन जुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। ओही सूरज है, ओही चंद्रमा है, ओही तारे ने, ओही धरती है, ओही वगदी होई पवन है। ना पवन बदली है, ना सूरज बदले है, ना चंद्रमा बदले है, ना ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे बदले ने, ना जमीन बदली है। फिर युग दी तब्दीली किसते खड़ी है, किसते खड़ी है? युग दी तब्दीली सिर्फ मनुख ते खड़ी है, बंदे ते खड़ी है। कोई पंछियां दी दुनिया च भी युग नहीं बदलते। हजारां लखां साल पहले जिवें चिड़ियां रहिंदियां

संत नानक नारायण। हार गया वो जीवन दी बाजी जो काम आश्रित हो गया, जीत गया वो जीवन दी बाजी जो राम आश्रित हो गया। कामना राम दी करिए मनुख सदाचारी बन जांदा है, कामना वासना दी करिए दुराचारी बन जांदा है। और वासना दी कोई सीमा नहीं, कामना दा वेग वासना नू वधांदा है, वासना दा वेग कामना नू वधांदा है। और इस तरह जीवन दर जीवन जिंदगी काम आश्रित हो जाती है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते त्रै लोक गवन, सिर्फ मनुखा तक ही ए वासना तेरी पहुंच नहीं, तू ते तीन लोकां दे छाई हुई है, पशुआं दे चैं, पंछियां दे चैं, मनुखां दे चैं, जिन्हां नूं असी देवता कहिंदे आं, ये भी सही वासना करके भ्रष्ट होए। उन्हां दे अंदर भी कामना वासना दी ही चलदी रही। देवतियां दे सिरमौर देवते मने जांदे ने इंद्र, और ये असीम वासना करके काम करके भ्रष्ट होया। और वाकई काम वासना मनुख नु अंधा कर दे दिए, इतना अंधा हो गया कि भ्रष्ट होया। एक वक्त दा सिरमौर संत गौतम ऋषि उसकी पत्नी अहिल्या थे, जो एक देवी दे समान सी, इसने उसनु वेसवा बनाया। जदके देवते दा कम है वेसवा नु देवी बना देना, पर एक ऐसा देवता वाकई काम देवते नु भी भ्रष्ट करके रख देंदा है, मनुखा नु भी भ्रष्ट कर देंदा है, पशु पक्षी ते इसी दलदल विच फसे हुए ने। बड़े बड़े जपीश्वर तपीश्वर लोभ दा ते त्याग कर गए, अहंकार नु भी सुट के परे भज गए, सता छोड़ देती, लेकिन रूप दा चिंतन अक्सर चलदा रहा, वासना मजबूर कर दी रही, रूप दा चिंतन चलदा रहा। कहानियां ने गाथावां ने इंद्र स्वर्ग तो अपछड़ा भेजदा है, किधरे मेनका किधरे उर्वशी किधरे तप भंग आउंदा है विश्वामित्र दा, किधरे भ्रष्ट आउंदे ने श्रृंगी ऋषि, किधरे वासना दे दलदल विच फसदे ने महान योगी राज मच्छंद्रनाथ। दरअसल कोई स्वर्ग तो किसे अपछड़ा नूं नहीं भेजदा, वासना कल्पना दा स्वर्ग खड़ा कर देंदी है, कल्पनावां दियां हूरां खड़ियां कर देंदी है, कल्पना दियां अपछड़ावां खड़ियां कर देंदी है। बैठा सी राम दे चिंतन विच, चिंतन चल पिया होरां दा, बैठा सी प्रभु सिमरन विच, सिमरन चल पिया अपछरां दा, कल्पना दा स्वर्ग। और जद कल्पना दे स्वर्ग विच अपछरा होवे होरां आवन, तो वास्तविक जगत जो हकीकत दा जगत है इस दे च इस ऋषि नूं भ्रष्ट होंदे आ देर नहीं लगेगी, जो कल्पना सी साकार हो जाती है। तो भ्रष्ट होए विश्वामित्र, भ्रष्ट होए श्रृंगी ऋषि, भ्रष्ट होए ऋषि महान योगी मच्छंद्रनाथ। ये आम साधारण मनुख नहीं ने,
जिन्हां ने विचारां दी शिखरता नूं छोया सी, जिन्हां ने जीवन दियां बुलंदियां नूं भी वेख्या सी, जिन्हां ने प्रभु सिमरन दी गहराइयां नूं भी देख्या सी, फिर भी वासना, फिर भी कामना और कामना विच वासना और वासना दी ही कामना, इस तरह काम वासना करके ए ऋषि, ए जोगी, ए बड़े बड़े जपीश्वर, ए बड़े बड़े तपीश्वर भ्रष्ट होंदे रहे, इसी दलदल विच फसते रहे। जीवन सफल करन लई आए सन, जीवन निष्फल हो गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फुने छंद विच इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की थी। और धन जाइए, सदके जाइए, कुर्बान जाइए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, जो बड़े बड़े बारीक विषयों को भी बड़ी बारीकी नाल छूंदे ने और विस्तार से प्रगट करते हैं। धन गुरुदेव जी महाराज दा वाक, पंकज फाते पंग महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज, पंक कहंदे ने चिक्कड़ नूं, पंकज, पंक तो जमया, पंकज पंक ने जिसनु जमया है, कमल पदम चिक्कड़ दी पैदाइश है। कमल दियां जड़ां चिक्कड़ दे चने, दलदल दे चने, पर स्वप्न महक खेड़ा उपर है, चिक्कड़ तो भी उपर, पानी तो भी उपर। कई दफा ऐसा होंदा है पानी घटता है, कमल दी बुलंदी भी घटती है। जो गगन नूं चुम रहा सी, धरती दी तरफ डिगण लग पैंदा है, क्योंकि पानी घट गया। पानी पदार्थ, पानी सुख पदार्थां दा, परिवारिक सुख पदार्थां दा, सुख धन दा, सुख मनुख गगन नूं चुम्मण दी सोचदा है, लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिता है। वाकई धन संपदा पदार्थ यदि सब कुछ प्राप्त हो जान, परिवारक सुख पदार्थां दा सुख, धन संपदा दा सुख, सता दा सुख, ते जद कुछ होर सुख दी लालसा ना रवे, या ए पानी थोड़ा जिया घट जाए, तो फिर कमल थोड़ा जिया थल्ले गिरता है, ऊंचाइया थोड़िया थल्ले आउंदियां ने। महात्मा बुद्ध राजघराने तो ने, राजकुमार ने धन संपदा दी बुलंदी देखी सी, पानी बहुत सी, पदार्थ बहुत सन, ऊंचाइया सन। इसी तरीके नाल स्वामी महावीर राजकुमार ने, राम राजा ने, श्री कृष्ण राजा ने, बहुत सारे भगत संत, अगर पदार्थां दा जल भावें थोड़ा सी, फिर भी आसमानों नूं छोया, तो इन्हां दे पुरबले पुन सन, प्रताप सी पुरबले पुन दा, पिछले जन्मां दे संस्कार, उन्होंने इस तरीके नाल उन्हां नूं प्रेरित कीता, उन्होंने बुलंदियां नूं छोया। आम साधारण मनुख दी गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल समझांदे रहे,
पानी कटे कमल थल्ले गया। अचानक किधरे जोर दी बारिश हुई और सरोवर विच हड़ दा पानी आ गया। बहुत वेग नाल आया, बड़ी तेजी नाल सरोवर उपर उठे है। कमल संभाल नहीं सके अपने आप नूं, डूब गया पानी च। सिर्फ पानी च ही नहीं डुबिया, जिस चिक्कड़ विच इसदियां जड़ां सन उसे चिक्कड़ विच खुब के रह गया। मनुख पैदा होया काम तो, चिक्कड़ तो। मनुखी जीवन दा कमल चिक्कड़ तो पैदा होया है, काम तो पैदा होया है। पंकज फाते पंग महामद गुंफिया। ये जो इतना सुंदर कमल दा फुल है, इते पंक दी देन है, चिक्कड़ दी देन है। ये मनुखी जन्म, ये मनुखी काया, इतनी सुंदर काया, इते काम वेग दी देन है। इते जमे है चिक्कड़ तो, पिता दा चिक्कड़, मां दा चिक्कड़, पिता दी वासना, मां दी वासना, इते उस तो जमे है, इते चिक्कड़ तो पैदा होया है। पैदा तो चिक्कड़ तो होया। घर विच सुख वधे, आराम वधे, प्रभु दा सिमरन चलिया, उपर उठिया। आसमानां नूं छूण दी लालसा, गगन नूं सजदा करन दी लालसा, लेकिन पानी घटिया, थल्ले आया। दुख और पदार्थां दी कमी, उलझना कुछ खेड़े च फर्क पांदियां ने, कुछ गिरांदियां ने। अचानक किधरे हड़ दा पानी, किधरे किसे दरिया चो वाड़ा निकले है, उसने रुख सरोवर दी तरफ कर लिया। लबालब अचानक अचनचेत सरोवर नु भर देता है। कई दफा अचानक धन संपदा दे अंबार मनुख दे घर विच लग जांदे, हड़ दी तरह, मानो किसे दरिया दा वेग सरोवर दी तरफ हो गया है। मानो बरखा दे हड़ दा जल सरोवर दी तरफ हो गया है। किसे किसे घर विच, किसे किसे मनुखी जिंदगी ते धन ते संपदा दी बारिश ही हो जांदी है। जिवें सरोवर विच कोई दरिया पै गया है, इस तरह पदार्थ आ गए ने, इस तरह धन संपदा आ गई है। अचानक मिले हुए इस धन संपदा ते पदार्थां दे वेग नूं झल नहीं सकया, ठल नहीं सकया, डूब गया। पहले पदार्थां च डूबया, पहले कमल पानी च डूबया, फिर जिस चिक्कड़ दे चिस्तियां जड़ां सन, जिस चिक्कड़ चों पैदा होया, उसी चिक्कड़ विच फस के रह गया। फिर ते अत्यंत कामी हो गया। जद सुनदे हां किसे नवाब दियां 500 बेगमां, किसे राजे दियां 400 राणियां, किसे शेख दियां 100 बेगमां, हैरानगी, क्या जिंदगी इसे लई, चिक्कड़ तो जमया, चिक्कड़ विच फस के रह गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, पंकज फाते पंग महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐ कमल, तू अपनी महक भूल गया, अपना स्वप्न भूल गया, अपना खेड़ा भूल गया, चिक्कड़ विच फस के रह गया।
बढ़ियां बढ़ियां जिंदगियां खिड़ियां होइयां गगन चुंबी इस चिक्कड़ विच गर्त होंदियां देखियां ने फसियां होइयां देखियां ने इतिहास भरिया गया और हैरानगी क्या जीवन सिर्फ इसे लई है नहीं संभाल सकया इस हड़ नूं जितना धन वधिया जितने पदार्थ वधे उतना ही कामी हुंदा गया जितने दुनियावी सुख वधे उतना ही कामी हुंदा गया इदी वाशना इदी काम वाशना इदी कामना बार बार जाके रुकी स्त्री ते वैसे ते कामना एक सर्कल दिच दौड़ दी है एक घेरे दिच एक वर्तुल दिच पुत्र दी कामना मिल गया पुत्र कामना अगे गई मित्रा दी कामना मिल गया मित्र कामना अगे गई धन संपदा दी कामना अगे गई ये वक्ती तौर के आके रुक दी है स्त्री ते तो साहित्यकारा ने साडे देश दे धार्मिक पुरुषां ने स्त्री नूं एक नाम दिता है कामनी कामना दी मणि जिथे मनुख दी कामना आके रुक जांदी है वक्ती तौर ते घूमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है घूमदी है फिर आके स्त्री ते रुकदी है स्त्री बन गई कामनी स्त्री दी कामना घूमदी है रुकदी आके पुरुष ते तो पुरुष बन गया कामदेव एक कामनी स्त्री ते पुरुष दा ए मिलन कामना दी मणि ते कामदेव दा मिलन होके रह गया जदके इते होना चाहिदा सी ज्ञान दा मिलन भक्ति दा मिलन मिलन स्त्री नू ज्ञान मिलदा पुरुष नू भक्ति मिलदी पर नहीं पुरुष नू मिली कामनी स्त्री नू मिलिया कामदेव ज्ञान देव रह गया भक्ति देवी रह गई भक्ति दी मणि रह गई पुरुष दी चमक दमक मत्थे ते उस दिन प्रगट होवेगी जिस दिन भक्ति दी मणि इसते मस्तक दे चमके और स्त्री दा मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान दा प्रकाश ज्ञान दा सूरज उस दे मकसद मस्तक ते जो है चमके और स्त्री पुरुष दा मेल ए ज्ञान ते भक्ति दा मेल ना होके इति कामना दी मणि ते कामदेव दा मेल होके रह गया परिवारक रिश्ते ए ज्ञान ते भक्ति दे रिश्ते ना रह गए इति काम देव ते कामना दी मणि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा भी प्रमाण कर देने छले कनक कामनी छले आ गया मनुख देच तोखा खा गया मनुख कामनी तो कनक तो जिंदगी बर्बाद हो गई जीवन भ्रष्ट होके जहर रह गया भक्ति दी मणि चमकनी चाहिदी सी काम मणि चमक रही है कामनी ज्ञान दा प्रकाश मस्तक ते होना चाहिदा सी कामदेव चमक रहे है और ए मिलन अगर कामदेव ते कामनी दा होया और जीवन भर ऐसा होया तो इस तो जो औलाद पैदा होवेगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं होवेगी वो औलाद कैसी होवेगी धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान कर देने कली अंदर नानका

और इस दौर देच, इस कामी युग देच, हम कहियत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं, पुत्र जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा, पुत्र ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है, कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है, कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके, दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे, पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे, तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया है।

उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममय नहीं हो सकया, सिर्फ काममय होके रह गया। पातशाह कहते ने रन्ना होइया बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संयम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज। रन्ना होइया बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण लई निकलदी है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा, अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी दा है, इदे अर्थ ने शिकारी, पुरुष शिकारी है, इसे शिकार दी तलाश च है, इसकी खोज यही है। कोई नगन शरीर देखण न मिले, नहीं मिल सकया, इतने पैसे नहीं कि थिएटर दे जाके किसी नगन स्त्री दे नृत्य नु वेखे, और अजे इतनी धनाडा दी महफिल भी इसनु नसीब ना होवे जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मां दे च ने तस्वीरां दे च ने मूर्तियां दे च ने ओह वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रहीआं ने। फैश नावल जिनसियात नाल भरीआं होईआं कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ाए जा रहे हैं। मनुख मानो बीमार होके रह गया है, वासना दा बीमार, और इसने सहजे सहजे हर माहौल नूं दूषित कीता है। इस वासना नूं प्रार्थना किवें बनाईए? प्रार्थना तो मिलेगा सदीवी सुख, वासना तो मिलदा है बिल्कुल मामूली सुख। निमक काम स्वाद कारण पानी, कोट जन्म दुख पावे कोट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक विच भी कहंदे ने अल्प सुख अवित चंचल, ऊंच नीच समावणे, बहुत थोड़ा जिहा सुख और तू ऐसा चंचल कर देना, चाहे कोई महान मनुख है ते चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अल्प सुख दे फस के रह जांदा है। बचाओ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ढंग दसते ने तब भय

क्रोधं कदं करुणा न उपर्जते बिखयन्त जीवं वशं करोत् निरतं करोत् यथा मर्कटे अनेक शासन अनेके शासन ताड़ंत जम दूते तव संगे।

तान कर धर्म वधे नित। रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए, उस सच नूं सत नूं रटन करिए, उस विच मन जोड़िए, धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है। और परोपकार कीते हां, दान पुन कीते हां, धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है, उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे ते टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान, ढह ना जान, तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन, तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं, किसी सोटी दा, किसी दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल, क्षमा दे सहारे, खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है, उच्चा हुंदा है, उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा, धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मात्र क्रोध कर दिया, धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन, पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख देंदी है, कितने दिनों की साधना, कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है, बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है, एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को, मुर्दा रोंदी हुई, चीखती हुई। डॉक्टर भी हैरान है, जब मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब, जदे खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है, रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये ते ठीक है, पर मैं इस वास्ते ले आई है, क्यों मरया है, किवें मरया है, मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है, अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है, मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया, कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी, मेरा दूध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है, खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दूध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नु दूध पिला रही सी, तेरी मनोदशा की सी, तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी, बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी, ये बच्चा विचकार रोन लग पया, मैं इसनु दूध पिलाण लग पई,
पर गाली गलौज साड़ी चल रही सी। मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा, ऐ बीवी, तू इस बच्चे नु दूध नहीं पिलाया, जहर पिलाया है। जब तू क्रोध नाल उबली, क्रोध करके तेरिया शरीर दिया ग्रंथियां ने जहर उबलनी शुरू की थी। उना गंडा चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त हुई, वो दूध विच लीन हुई। तो बच्चे नु जहरीला दूध पिलाया, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दूध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नु जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमय हो सकता है, शरीर अमृतमय हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना सत्तर दोए भरे अमृत सरे।

चारों सुन ए मोराजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हिरदे च अपना पैर रख देना, वो अपना विगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा दी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोराजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़िया होवेगा, सालां बदी जो पड़िया होवेगा, एक छिन्न विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध विच सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध विच जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होगा, ये दार्शनिक होगा, ये फिलोसफर होगा, ये चातर होगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड दे भुला के रख देंगा, एक छिन्न दे भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कल मूल करोधं कदं

करोत जथा मरकटे। हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और इह सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। इह क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नर्तन करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासन अनेक सासन ताड़न्ते जमदूते तव संगे अधमं नरे। जिस दे अंदर तेरा वासा हो जांदा है उसनू जमजूतां दी ताड़ना सारनी पैंदी है, बार बार जमना पैंदा है, मरना पैंदा है। हे क्रोध तव संगे अधमं नरे। अधम गति दे लोग तेरे नाल आउंदे ने, अधम मनुख नीच मनुख तेरे नाल आउंदे ने। क्रोधी महान नहीं हो सकदा, क्रोधी महानीच है, महानीच है। तो फिर इस तो बचाव किस तरह करिए, इस क्रोध तो किवें बचिए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक सानू इंज उपदेश करदा है। आखरी पंक्ति

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र देवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी दे भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पादशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छोरा मुठा मुर्दार धान के रूप रहा करतार। हे करतार, धानक हो गया, धानक जो शमशान घाट विच बैठ के उड़ीक कर देने, कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साड़ियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसकी उड़ीक किसी की मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख की रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख का इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख का आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शिक्षा दी ने एक बड़ी सुंदर कविता शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान दे चो नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती दे चो इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने दे चो हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं होगा, उदी मनोबिरती थल्ले नहीं जाएगी। पर ओही सिर्फ धानक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है, नहीं, सारा
संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख देता है और खुद बैठा है धानक दी तरह। कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धानक बन गया और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठता है इहदे नाल उठ बैठदियां ने। भौंकदा है कुत्ता, भौंकदियां ने एक कुतियां, रात नूं जद सौ जांदा है वक्ती तौर ते एक कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होंदा है, मजा ले दी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजा ले जपजी साहब पढ़े, ये मंदिर दी सुरत लवे गीता पढ़े या ये नमाज पढ़े ते कुरान दी तलावत करे, नहीं, मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आशा ते तृष्णा। थोड़ा जिया लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आशा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसकी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आशा, ये दोवें इतनिया जोर दिया भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नू उस लोभ नू नाल भौंकना पैंदा है और पूरी उच्ची आवाज दे भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे, आशा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर देन, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दिए, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जा मुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है, अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सूअर खा रहा है मुर्दा सूअर, मरिया होया सूअर। पराया हक इते सूअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनोहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है,
जैसे डार्विन ने किसी वक्त किया कि मनुख की आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उसकी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखा मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने, जैसे डार्विन ने देखा बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खाता है। भारत दे ऋषि ने देखा गऊ का मन ते मनुख का मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख की आखिरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनी है। इस तरह मनुखी जिंदगी की आखिरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकौले डार्विन बंदर हो सकती है। अफजल हो गई गऊ, महान हो गई गऊ भारत दे चिंतन देच, देशवासियों दे चिंतन देच, क्योंकि मनुख की तरह सोचती है, मनुख की तरह ममता रखती है, मनुख की तरह दुख सुख महसूस करती है। इसनू मारना ऐसा है जैसे मनुख नू मारना, और इसका मांस खाना ऐसा है जैसे बंदे का मांस खाना। त्रिगत जून है, सूअर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है। तो इस्लाम दीवानी मोहम्मद साहब ने हराम करार देता नहीं खाना, ये सूअर नहीं खाना। कि दिन भर बिष्टा खांदा है, गंदगी खांदा है, और फिर इसकी गर्दन की हड्डी इतनी मजबूत, इतनी सख्त, ये हलाल नहीं हो सकता, जबा नहीं हो सकता। बहुत तड़पेगा, बहुत तड़पेगा, खाना हराम। पर महाराज कह रहे ने खा रहा है वो सूअर, अगर वो मुसलमान है, खा रहा वो सूअर अगर वो बेगाना हक खा रहे है, अगर भारत का वासी है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है, पराया हक खा रहे है, गऊ खा रहे है। धन गुरु नानक देव जी महाराज देवाक, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमा ता भरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आशा ते तृष्णा दो कुतियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल आउंदा है, बेहाल आउंदा है, कूड़ छुरा मुठा मुर्दां, भलके भौंके सदा बेहाल। ये आसा तृष्णा भौंकदियां ने, बेहाल कर देंदियां ने। ये लोभ कुत्ता भौंकदा है, निढाल करके रख देंदा है। इक स्वान दोए स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बेहाल, कूड़ छुरा मुठा मुरधार, तानक रूप रहा करतार। फिर ये बेहाल होया मनुख झूठ बोल के प्राय हक नू अपना साबित करने की कोशिश करता है, मेरा है मेरा है, झूठ बोलता है जद उसका नहीं है। ये जमीन मेरी है जबकि उसकी नहीं है, ये घर मेरा है जबकि उसका नहीं है, ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये मलकियत मेरी है। इस तरह दूजियां का खुंदा है, दूजियां की चीज देते वस्तु देते अपनी मोर लांदा है, बेहाल होया ते बेहाल कीता है लोभ ने, बेहाल कीता है आसा ते तृष्णा ने। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने लोभी दा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोभी पापी हुंदा है। लोभी तो हर वक्त खतरा है, धन संपदा नूं
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲਕਤ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਛੀਨਾ ਝਪਟੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਤੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਦਲਦਾ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲਟਾ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਹੰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਕੁਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਿਤਾੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੌਰ ਕਈ ਦਫਾ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜਦ ਸਦਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਦਨਾਂ, ਲਿਤਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਦਨਾਂ। ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਏਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਆਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਚ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਔਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਕੋਨਾਰਕ ਖਜੁਰਾਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ,
कोई पाप नहीं। और ऐसी ऐसी क्रीड़ा होंदी रही इन्हां धार्मिक मंदरां विच जिन्हों अल्फाजां विच अज दे समय बयान करना औखा है, जिन्हों सुनना सुनाना भी कठिन है। पर जे किधरे लोभ प्रधान होवे, बहुगिणती दे च होवे, ताकत दे च होवे, तो पाप व्यापक हो जांदा है, छा जांदा है। पाप चारों पासे बकौले गुरु नानक अज दे दौर विच मनुखी मन दे ते राज कर रहा है लोभ। लबे पाप दोए राजा मैता,

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणां दा सागर है, मनुख अवगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे,

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुक स्याणे मनुक गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पाए, तां भी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा को खारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर। जो करण हार करतार है समूह ब्रह्मंड दे बनाण वाला, उसनू ही समझ के मोह दा करता भी होई है। तू मोह नू सजदा ना कर, कृत नू सजदा ना कर, करते नू सजदा कर। हर करण हार नमस्कारं सजदा कर प्रभु नू, हाथ जोड़ परमात्मा दे अगों, अरदास कर और आख तेरी शरण, तेरी शरण, शरण नानक जगदीश्वर। हे जगदीश, हे जगत दे मालिक, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। बचण दा केवल यही उपाव है। सिद्धे रूप दे मोह नाल युद्ध कठिन है, औखा है, मनुख दी बिसात तो परे दी गल है, मनुख दी पहुंच तो परे दी गल है। मोह मेरा, मोह मेरा कदी कदाई रूहे जमीन दे मनुखी दुनिया च ऐसे फुल खिड़दे ने जिन्हा विच निर्मोह दी सुगंध होंदी है। मोह दी बदबू नहीं, निर्मोह दी महक, मोह दा अंधकार नहीं, निर्मोह दा चानण,
मोदी कठोरता नहीं, निर्मोदी दया, निर्मोही दी दया सीमित नहीं होती। मोह ग्रसे मनुख दी दया सीमित होती है, अपने बच्चों दी दया पड़ोसी दे बच्चों दी नहीं। मोह ग्रसे मनुख नो अपने बच्चे दे औगुण भी चंगे लगते ने, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी नहीं चंगे लगते। अपना क्रोप बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी दा सुंदर बालक भी चंगा नहीं लगता। मोह ग्रसे दी दया बहुत सीमित, मोह ग्रसे दा प्रेम बड़ा सीमित, मोह ग्रसे दी समझ बड़ी सीमित। मोह ग्रसा सीमा दे जींदा है, उसका असीम नाल कोई संबंध नहीं। बड़े बड़े शक्तिशाली महाबली कहलाण वाले भी इस मोह दी सीमा दी कैद तो आजाद ना हो सके। मुगल सम्राट मुगले आजम जनाब जलालुद्दीन अकबर अदकड़ जी उम्र विच इसके घर औलाद हुई शाहजादा सलीम। पता नहीं कितने पीर फकीरां दी मजारां ते चढ़ावे चाड़दा रहा, चदरा चाड़दा रहा। धन गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार विच भी नंगे पैरी आया दर्शन करन लई, लेकिन दर्शन विच कामना सी एक बच्चे दी। भाग लगे समा पाके अदकड़ जई उम्र विच इस मुगल सम्राट दे घर सुंदर बालक का जन्म होया, जिसका नाम सलीम रखा गया। काफी दिनों का अकबर का रुके होया मोह हड़ की तरह वग उठाया। और राजपाठ विच इतना ध्यान नहीं, बच्चे नाल खेडना खिडाना इस विच ध्यान बहुत। डुल डुल के अकबर की ममता सलीम ते पै रही है, चुकदा है चुमदा है रखदा है वेखदा है, खुश आउंदा है प्रसन्न आउंदा है। एक दिन सलीम गोद देच है, खादमा नौकरानी महिला का फर्श साफ कर रही है, पोचा ला रही है। अकबर खादमा नु कहिंदा है, खादमा सलीम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विचारी खादमा नौकरानी की आखे, कहन लगी जहां पना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी जहां पना यह हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरा खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू एक काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर, दोहां दियां झोलियां भर दियां। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं,
जा लब के ले आ। हुकम मन खादमा चल पई, सवेर दी गई, दिन ढलदे हां वापस आ रही है, दबे हुए पैरां नाल तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है, इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे लिपटिया होया एक करूप और महिला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहता है, ए बच्चा किसका बच्चा है? जहां पनाह ते मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पनाह इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पनाह तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहते ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नु वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नु वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नु अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगुणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करोप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई कोई मनुख प्रभु की शरण प्रकट, प्रभु का चिंतन करे, नाम दे गीत गांदिया गांदिया मोह दे पर्दे नू परे सुटदा है, निर्मोह हो जांदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने, बाकी तो सारे का सारा पराया। इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा, डर विच जीवेगा, दुख विच जीवेगा। इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है। सारा जगत अपना है प्रेमी लई, सारा संसार अपना है, तो निर्भय होके विचरदा है, आनंद नाल विचरदा है, सुख नाल रमण करदा है। सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है, निर्मोही असीम होंदा है। निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है, मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है। बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी, जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी, उसकी सोचनी छोटी, उसकी समझ छोटी, उसका सब कुछ छोटा। बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख, और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही, कोई सीमा नहीं,
परमात्मा की कोई सीमा नहीं, निर्मोही की कोई सीमा नहीं। साढ़े देश दे एक ऐसा भी पुरश होया है, राजा सी, स्वभाव किधरे, मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह, और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह, राजा निर्मोह। इतिहासक वार्ता है, एक ऋषि ने जद ये ना सुने राजा निर्मोह, हो नहीं सकता, कठिन है, औखी गल है। तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ, जैसे महलां विच दाखिल होया है, राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोहग्रस्त है निर्मोही नहीं। राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता, आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी, मैं थोड़ी देर दे चावना। राणी नु ऋषि कहिंदा है, राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज। हे राजमाता, थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया, मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ये खबर सुनाने वास्ते। पर ए राणी, राजे निर्मोह दी राणी, उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी, मौत उच्ची हो गई सी। ऋषि नु कहन लगी, पेड एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए। पेड एक साखा घनी पंखी बैठे आए, ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए। संसार एक वृक्ष की तरह है, कई इस दियां शाखा ने, कई मुल्क ने, कई इलाके ने, और संस्कारां ते प्रालवद वस होके संजोग वस होके इन्हां परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते हैं। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नू चले जांदे ने। ऋषि, ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये भी रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदियां करदियां थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचदा है, चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया। राजसभा ऋषि दाखिल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी राजे ने,
सन्मान दिता बिठाया आन दा कारण पुछया ऋषिराज किस तरह पधारे साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए इस राजसभा नू आके पवित्र कीता आहो भाग साढ़े कोई सेवा होवे ते दसो ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख बहुत संताप बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं मेरी जबान लड़खड़ा दी है पर मजबूर हां दसन देवी मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है दसोरा राज ऋषि संत जन दसो खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

साढ़े पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी किया है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसते आया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़े हो,

हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है, नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नूं देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा।

अनुराग। और साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपदा मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमत है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई तरह तरह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार, अहं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ए मैं रहिंदी है, ए अहं भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहिंदा है, चलदा रहिंदा है। ए जन्म ते मरण दा मूल है, ए जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हौमें एहा जात है, हौमें कर्म कमाए, हौमें एही बंदना फिर फिर जौनी पाए। हौमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ दे च पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां देच अपने अपने दोष पाए जांदे ने, जैसे असी वेखदे हां

हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग, होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग, जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसदा अहंकार, किधरे इस जीवन दा अहंकार, किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित हुंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा हुंदा है और शक्ति सता ताकत इसते आधार ते खड़ा हुंदा है। जो बन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती विच धन दी मस्ती विच और सता दी मस्ती विच, धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जो बन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जो बन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसदा बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी तो पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दीरग कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान करदे ने, दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद, ए सूरज एक जर्रा है,
ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੈ। ਦਰ ਮਹਿਫਿਲੇ ਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਰਰਾ ਅਸਤ ਖੁਦ ਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਦਮ ਸ਼ਰਤੇ ਅਦਬ ਨਾ ਵਾਸ਼ਦ। ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਗਿਆਨ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲਮ ਕੇ ਜਹੂਲ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹੂਲ ਕਾ ਇਲਮ, ਮੈਨੇ ਯੇ ਦਰਸ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਸੀਰਤ ਸੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਲਮ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਲਮ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ, ਆਲਮ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਕੇ ਜਹੂਲ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਹੂਲ ਕਾ ਇਲਮ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮ ਬੜੇ ਕਉ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਏ ਬੁੱਧ ਕਭੈ ਨਨਾਸੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸੇ, ਭੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹਮ ਬਡ ਕਵ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਨ, ਬਸ ਇਹੀ ਜਹਾਲਤ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨ। ਹਮ ਬਡ ਕਵ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਵੇ ਨਨਾਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਗੁਣ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ।
ਇੱਕਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੇ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਅਕਲ ਸਿਰ ਅੱਖਰ ਕਾ ਭਿਓ ਨਾ ਲਹੰ, ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਵ ਕਰਨ, ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਅਸਥੋਲ ਅਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਸਤਕ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਟੇਢਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵਣ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ। ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ, ਅਸਤ ਚਰਮ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਮੂੰਦੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਡੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਹੱਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ, ਔਰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਖਲੜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਣ, ਮਿੰਜ ਦਾ ਮਾਣ, ਔਰ ਖਲੜੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਏ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪੂਰ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨਕ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ, ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨੜੋ। ਕਪੂਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਜੈਸੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਨਾਲ ਛੂੰਦਿਆਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨੜੋ, ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਹੋਣ ਮਿੰਜ ਮਾਸ ਖਲੜੀ? ਅਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਵੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੇ। ਪੁਰਖਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਧਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਸਦੇ ਵਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਇਹ ਤਨ, ਔਰ ਤਨ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਾ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਇਸਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो माण मिलता है, वो माण इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने दे चाया है, धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है, उन त्याग दा अहंकार। सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है, उन त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उहदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है, और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके, और हर एक दा माण मैं हो जावा, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है, तू है, तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर दे चलीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है,
इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है, इसने भगवान दा रूप बना दिता। मैं हां, मैं हां, मैं हां, ये शैतान दा रूप बना देंदा है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान दा रूप है जिसते रोम रोम देच, जिस दिया सारिया क्रियावां देच भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही, मैं ना ही, जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठां है। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम दा कहना है, अज राह चनार, अज राह चुनार, कि सलामत न कुनत, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुनाज ही के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनंद ओ इमामद न कुनद, जे किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं, ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद देच भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां देच भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक देते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा देच भी जो है था ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहंदा है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है, अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक
साधना नो भी अपना सिंघासन बना देंदा है, बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहुंदा है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनू अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नू होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नू मित्र बना लेंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नू उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नू, जड़ चेतन सबनू अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नू मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दसती है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लेंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚਵੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁਗਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਖਸਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਸ
ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हर्क सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवे कस्बे दे अंदर दाखल होंदे ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जद इस कस्बे दे आउंदा सी सारियां दी निगाह मेरे ते अज ए निगाह फिर गईयां ने अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है हैं इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनों पे वेख देने खैश जिस घर दे जाना सी गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछे उस बैरागी साधु तो ए जो नाल आए ने ए कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनु वेख रहे ने सोना चोला पहने आया है मुखड़े ते शांति झलक दी है निर्माणता बिखर दी है रहस बिस्माद अखां दे इच है तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने दुखत होके कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन दे दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है खैर जद उस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दे खैर माफी मंगन लग पया कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे ते शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे ने इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वालियां ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन दे दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या कर देने ज्ञानी ने रह गई इस चोले दी गल ये चोला मेरा नहीं है मेरा नहीं है इस दे विच ही वो कह गया है मेरा है मेरा है मेरा है खैर उस घर तो ज्यों निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी पर निकल गई है गल तू सहन कर ले बर्दाश्त कर ले हुण मैं नहीं कहांगा तीसरे घर गए आओ भगत होई बिठाए गए पर वो चोला
तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सवावक पूछ लिया, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़िया दी गल, इस चोले दी मैं इस दी गल नहीं करनी। ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, एले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने ते उन्हां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी हंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष होंदे ने हंकारी, गुरु नु भी छुपांदे ने। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नु छुपांदे ने, पुत्र नु छुपांदे ने, अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने। सिर्फ अपने आप नु ही अग्गे करना इना दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नु भी पिछे सुटिए, परमात्मा नु भी पिछे सुटिए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकदा। अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नु अग्गे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं। इसे नु आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है। फखर बकरे ने किया,

उस आंत देचो सोटे दी जरब नाल निकल रहे है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नू खाक ते अपने मस्तक नू रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तों देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होंदा है अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी तीसरे दी मित्र दी तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है गल नू छुटियाना और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल देच उस नालों अग्गे होवे गुण देच कला देच ज्ञान देच शील संजम देच या फिर प्रभु दी बंदगी देच या संसारी तल ते ले लो सता देच धन देच स्वप्न देच किसे भी पख तो जो अग्गे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नो सच नहीं कहेगा। अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे है कड़े है ये बेचारा मंदिर दे पीछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी पर हुण पीछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणा दी सिफतों सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफतों सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है पर वो ते निंदा करदा है गुणा दी निंदा करदा है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिठ हो जांदी उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जांदी है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज फरमान करदे ने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जमदे ने मरदे ने आउंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं।

ये बड़ा असाद रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए, भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाद रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू तू तू इते औषधि हो गई, मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नु वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नु घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा, इदु तेरा।

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे है। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल विच फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आंदा है। रात अपनी जाल लेके आंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दिया जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइया ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मोड़े कवन गुने। ऐ मूरख किमें छुटेगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पिया जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहा है, रात नू तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन नहीं बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा

0: ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਕਾਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਭੂਤ, ਭਵਿਸ਼, ਵਰਤਮਾਨ, ਮਾਜ਼ੀ, ਹਾਲ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਵਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਦੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਕਦੀ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ। ਭੂਤਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਬਣੀ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਠੋਸ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪਕਸ਼ੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਭੂਤਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਬੂਦ ਹੇਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾ, ਕਿ ਸ਼ੌਕੇ ਯਾਦੇ ਤੋ ਅਵਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪੜਾਉ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਸਤੇ ਚ ਵਕਤੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਭੂਤਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ। ਭਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪੀਏ, ਤੋਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਵੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਤਨੀ ਇੱਛਾ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੋਝ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ, ਖਾਹਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਜੀਵਨ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਮ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਅਸੀਮ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਸੀਮ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਸੀਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਭਵਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। एक तीसरा समय जिसनों कहने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापी है, असीम है भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इना दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नू खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नू तड़फावे। जो समा लंघ है उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही ने। जो समा आण वाला है उदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रही ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना का है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है। इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी नापी है वर्तमान किन्ना का है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापते ने। वर्तमान किन्ना का है, यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम, इह एक दम जो मोह दे चै नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग है, उते वर्त ले, उते खर्च हो गया। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है ओही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहेशरा न बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगा चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। एक दम जो नकद से इन्हों मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मन दिच सी वर्तमान नकद, इन्हों मैं बतीत कीता आण वाले दमा दी चिंता च। तो इस तरह यादा भूतकाल दिया, चिंतावां भविष्य दिया, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं। वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सैकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे, हाजर हजूर खुदा है। ਉਸ ਦਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਮ ਜੋ ਨਕਦ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਮਕੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਮਛਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਲਾ ਸਕੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਇੱਕ ਛਣ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਔਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਨੇ, ਰੋਣੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਹੈ, ਨਫਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਆਪਣ ਹੈ, ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਟਿਕਿਆ ਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਮਿਟ ਗਏ, ਦੋ ਮਿਟ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਦਮ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿਸ਼, ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਜਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਈ ਤੇਤੀ, रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कवन गुणे दस्ते सही तिमें छुटेगा इस जाल तो। तो सतगुरु की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा फाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे छे, सच ते एक सैकंड दे छे, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंघ गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहने, मरदानिया तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया। समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमां दा थे मर्दाने नू भरोसा है, इतने दम ते मैं ले सकदा। बाले नू पुछ देने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदे पातशाह, मर्दाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं ते इक्को ही कदम दे भरोसे जी रहा। एक कदम जो पुटे पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा। समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नो, पातशाह थानू किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहने ने हम आदमी हां इकदमी मोहलत मौत न जाना, एकदम जो मोह दे चे बस इसे ते यकीन है, इन्ना एक भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दिश डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दिश डिग गया मन मिट गया विचार खो गए उथे एक नू प्रगट होण लई अस्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नू प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है, और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहंदे ने सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, सब समय का तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने, ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक, विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिवजी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे, अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखिया अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनूं मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिला ते अजे ही मिला। इसनूं मैं उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उनू कहने ने ते बेहाल है, इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा, मुस्तकबिल दी फिक्र दे जी रहा, इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहा, इते माजी दियां यादां दे जी रहा, ये वर्तमान विच नहीं, ये हाल विच नहीं, और जो हाल विच नहीं परिश्रम विच कहंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत विच ईरान अफगानिस्तान विच पुछया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान विच है कि नहीं, एक प्रभु विच है कि नहीं, कि दो विच जी रहे हैं। सपना है जिन्नी देर तक चल रहे है, पर नहीं है अचेत अवस्था दे सपन, जागृत अवस्था दे मिट गया है, नहीं है, नहीं है, है स्वप्न है। स्वप्न देच मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था देच मनुख करे। स्वप्न देच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनती है, मन दी ओही हालत बनती है जो जागृत देच। स्वप्न देच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनती है जो जागृत अवस्था देच। पर स्वप्न देच मिलाप होया, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आती है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वप्न इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहंदे नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था दे जो संसार है वो निंद्रा अवस्था दे नहीं हो जाता है, स्वप्न अवस्था दे नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था दे जो संसार है वो जागृत अवस्था दे नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वह स्वप्न अवस्था विच विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था विच संसार है
1: ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾਂ ਭੇਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ शायद नहीं है, नहीं है, शायद है। काल का प्रभाव ते मौजूद है, समय का प्रभाव ते मौजूद है। उस प्रभाव हेत मनुख जी रहा है। किस तरह कह देवे कि नहीं है। जिस तरह जागृत अवस्था विच कदी असी सुखी आउंदे आ, कदी दुखी आउंदे आ, कदी हसते हाँ कदी रोंदे आ, कदी कोई मिलदा है कदी कोई विछड़दा है, कदी नफा है कदी नुकसान है। स्वप्न अवस्था विच भी ऐसा हुंदा है, कुछ सुख भरे सुपने, कुछ दुख भरे सुपने। किसे सुपन विच असी बिस्मात भरी अवस्था विच आउंदे आ, किसे सुपने च असी रो रहे आउंदे आ, दुखी आउंदे आ। किसे सुपने विच कोई मिलिया हुंदा है, बड़े प्रसन्न बड़े प्रसन्न, पर किसे सुपने च कोई विछड़दा है, बड़े दुखी बड़े दुखी। जागृत अवस्था विच असी कदी पाठ कर रहे हुंदे आ, सुरत जुड़ जांदी है, रस बन जांदा है, ऐसा स्वप्न अवस्था विच भी हुंदा है, जुड़ जांदा है मन, रस बन जांदा है, आनंद बन जांदा है। जिस संसारिक रस स्वप्न विच माणिया जा सकता है, तो निरंकार दा आनंद भी स्वप्न विच माणिया जा सकता है। जे जागृत अवस्था विच पदार्थां दा रस माणिया जा सकता है, तो परमात्मा दा रस भी माणिया जा सकता है। शायद इस वास्ते ही धन गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया है, सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका खोए। ऐ सुपने विच आण वाले हो, तुसी चले गए, क्यों? सपना चला गया, स्वप्न चलदा है निंद्रा दे, जागृत विच कल्पना चलती है, निंद्रा विच स्वप्न चलता है। निंद्रा अवस्था खत्म हुई, स्वप्न खत्म हो गया। जागृत अवस्था शुरू हुई, कल्पनावां दा जगत शुरू होया। तो सतगुरु ते मंग करदे ने, आओ सुभागी नींदड़िए मत सौ देखा सोए, ऐ भागां भरी नींद आ तू आ। शायद फिर सुपने च झलक मिले, शायद फिर सुपने च आनंद मिले, पर हां मिलाप भरिया सुपन, सुख भरा सुपन, इस तरह प्रतीत होंदे जिवें एक क्षण दे च बतीत हो गया। पर दुख भरा स्वपन जिस विच असी कुरला रही हुई है, तड़प रही हुई है, लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। जागृत अवस्था विच भी ऐसा हो जाता है। दुख विच काल लंबा हो जाता है, समा लंबा हो जाता है, सुख विच समा छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। बाबा फरीद कह रहे ने, फरीदा राती वडियां दुख दुख उठन उपास, बहुत लंबी हो गई ये रात होके ने, तो होके दुख तो निकल देने, होके विछेड़े तो निकल देने, और दुख दे समा लंबा हो जाता है। सूफी संत बाबा फरीद फरमान कर रहे ने, ए विछोड़े दी रात हे प्रभु हे खुदा बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी। कितनी लंबी हो जाती है, जितना महान दा विछोड़ा होवे उतना ही समा लंबा हो जाता है, जितना तुच्छ चीज दा विछोड़ा होवे दुख छोटा होता है, समा भी थोड़ा जिहा लंबा होता है, ज्यादा नहीं। पर मन महान है, रस है, आनंद है, उसका विछोड़ा हो गया है,
0: समा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कितना लंबा हो जाएगा? तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, चार पहर चौ जोगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगा वर्गे हो गए, नहीं लंघदे, नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा, लखां साल वर्गा, नहीं लंघदे। इन्ना लंबा हो गया कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगां वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत में इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतिशे जैसे विचारक ने कह देता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नूं दस दिया तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनू 4 साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नूं मनिया नहीं, इसे एक गुनाह करके वो मैनू हमेशा लई नरक, हमेशा लई। और ऐसा नरक जिथे जंबूरा नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दलदल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ये विचारक कहिंदा है फिर उस खुदा नूं रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है? बहुत सख्त है, वो तो बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा, नहीं लंघदा, नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे, एक क्षण देच, एक दम देच, भूत खो गया, भविष्य खो गया, अकाल प्रगट हो गया, काल ते खत्म हो गया। लेकिन बहु गिनती मनुखी दुनिया दी काल देच जी रही है। मनुख दे कोल सिमरति है, इस सिमरति कदी अगे जांदी है, कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी। ये किस तरह मिटे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहे, भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा, बहुत लंबा। चिंतत ही दी से सब को है, सारी चिंता विच दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी।
1: यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलणगे, उन्हां नूं भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य की चिंता दे च, जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है। भूतकाल कैसा है कुछ इस नूं चेते है, गुजरिया होया कल कैसे सी, गुजरिया होया साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन चेते ने, आने वाला कल किस तरह होवेगा कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल दी जद जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दिया यादा नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी दी सिमरती ये शक्ति ज्यादा होंदी है, वह इस जन्म की दीवार नू तोड़ के अगले जन्म च भी पहुंच जाती है, पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख का भविष्य है परमात्मा होना, भावें अज हो जाए भावें कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादां मासी दियां भूतकाल दियां यही बोझ मनुख ढो रहा है, इसी बोझ दे तले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरदा है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने, मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमे आप दे कन्ना विच होकियां दी आवाज पई, जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए ते नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है, गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमां ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है, हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, 10 क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है। तो नंदलाल सोचदे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पातशाह मैं शायर हां कवि हां आपका अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी परवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी परवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है, चल तू अपने तखयल दे आधार ते कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है। रंगश कबूद कर दिले अज पुरुष सुरार साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे पातशाह मेरे तड़पे हिरदे चो जिहड़े होके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। पातशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले तो जी रहे हैं, अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन, काल खत्म हो गए अकाल प्रकट हो गए, अकाल महा आनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है, काल भूतकाल दिया यादा ने, पर अकाल ना भूतकाल दिया यादा ना भविष्य दिया चिंतावां, परम आनंद प्रगट हो गया, अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहते ने, दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारियो, वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकता है, जो भविष्य दियां चिंतावां दे च डुबिया होया है उसनों किवें सियाणा आख्या जा सकता है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे च ही रहा है, अकाल दे च ही रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी ते सतगुरां दी बाणी फरमान कर दी है, काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठ्यो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने, अकाल है अजाल है, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल, समस्यावां ते भविष्य दियां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईया सारिया समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें, अकाल दी याद काल नु मिटा के रख देंदी है, अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठ्यो।

से पर गुरु नानक भाई साहब करके बुलांदे सन, भाई मर्दाना। भरा दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा है, और जो गुरु दा भरा है, गुरु नानक दा भरा है, भाईचारा बन गया गुरु नाल, इत बहुत वड्डी पदवी प्राप्त हो गई। तो सिख जगत दे भाई साहब एक धार्मिक पदवी है, गुरु नाल भाईचारा हो गया। हुण भाईचारा गुरु नानक नाल है, हुण भाईचारा गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल है, हुण भाईचारा गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल है। इस भाईचारे नू बड़े सन्मान नाल सिख जगत दे आदकाल तो देखिया जा रहा है, और अज भी असी चोटी दे धार्मिक मनुख नू भाई साहब करके बुलांदे हां। मरदाने नू सतगुर भाई साहब करके बुलांदे ने। जद भाईचारा है, इतनी नेड़ता है, तो नेड़ता दे कोई राज नहीं होंदे। कहिंदे ने मनुख उत्थे छुपा के रखना चाहुंदा है, चादर पर्दा पाना चाहुंदा है, जिथे कुछ ओपरापण है। छुपाना ही इस गल दा सबूत है, जो कुछ भी सामने है सब बेगाना है, सब ओपरा है। हर मनुख अपने अपने पर्दे चुके फिरदा है, और हर मनुख बुरके दे च है। किधरे किधरे ये अपना बुरका उतारदा है, जब देखदा है अपना है, ये अपना घर है, ये अपने ने, इन्हां नूं मेरी असलियत दा पता है, और मेरे नंगेज दा भी पता है, की ढकना इत्थे की ढकना। लेकिन आम बेगानिया तो मनुख नूं पर्दा करना पैंदा। पर्दा इस गल दा सबूत है, बुरका इस गल दा सबूत है, कुछ सामने ओपरा है, बेगाना है। भैण भरा दे सामने बुरका नहीं करदी, मां पुत दे सामने बुरका नहीं करदी, अपना है, ये तो अपना है। अगर मनुख कुछ छुपाण दी कोशिश कर रहा है, तो इसका छुपाना ही इस गल का सबूत है, सामने ओपरा है, सामने कोई बेगाना है। अपने दे सामने ते मनुख सब कुछ उघाड़ के रख देंदा है, उदा जी करदा है अपना सीना भी चीर के इहदे अगों रख दे। लेकिन बेगाने दे प्रति ते बड़ा सावधान आउंदा है, किधरे इस दियां नजरां मेरे सीने तक ना पहुंचन, ये किधरे मेरे अंदर झात ना मारे। तो जिथे भाईचारा बन जाए, उथे सब कुछ खोल के रख दिता जांदा है, और जिथे पर्दा पाना पए, दो गल्लां हो सकदियां ने, या ते सामने सारे बेगाने ने, ओपरे ने, और जिस ते पर्दा पाया जा रहा है, कोई चंगा भी नहीं होवेगा। हमेशा जख्मां ते पट्टी बनण दी लोड़ पैंदी है, हमेशा शरीर दा दागी थां छुपाना पैंदा है, हमेशा शरीर दे अपंग हिस्से नूं ही ढकना पैंदा है, छुपाना पैंदा है, दूसरे तों लुकाना पैंदा है। जो कुछ भी लुकाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, इतनी गल ते स्पष्ट है, ठीक नहीं होवेगा। गंदगी नूं ढकण दी लोड़ है, बिष्टां नूं ढकण दी लोड़ है, फुल्लां दे उत्ते चादर पाण दी कोई लोड़ नहीं। नग्नता निर्दोषता दा सबूत है, निर्दोष है, नग्न है, नग्न है, निर्दोष है, गुनाहगार है, ढकिया होया है, और ढकिया होना इस गल दा सबूत है, गुनाहगार है। गुनाह नूं ढकना पैंदा है। एक मासूम बच्चे दा जन्म होया है, नंगा है, पर इस दी नग्नता दे नंगेज पना नहीं है। इसका नंगा शरीर लोभ की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर वासना की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर काम की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, जबकि कई ढके हुए शरीर भी प्रदर्शनी करते हैं। गंदगी ते चादर पाई है, चादर दे चों भी बदबू बाहर आ गई है, चादर दे चों भी गंद बाहर आ गई है। तो ये दौर, ये समा, इसनू गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कलाल, और ये शब्द उच्चारण कर रहे ने मरदाने दे प्रति। मरदाने दे सामने इस युग दी नग्नता,
सतगुरु पेश कर रहे।

हालांकि युग ने अपने आप नूं ढकया, बहुत ढकया, बड़ा ढकया। एक जमाना ते ऐसा भी साडे देश दे लंघया है कि असी धार्मिक पुरशां दीआं मूर्तियां भी नगन बनाईआं, धार्मिक मंदरां दे च भी नगन मूर्तियां बनाईआं, और बड़े बड़े साधुआं दे टोले भी चले नांगे साधु, नंगे साधु। साधु होण दी पहचान नंगा है, इहदे कोल ढकण वास्ते कुछ भी नहीं, ढकण वास्ते कुछ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि इहदे कोल कपड़े नहीं ने, नहीं, ऐसी कोई गंदगी इसके कोल नहीं जिस नूं ढके। फुल नंगे ही ठीक रहिंदे ने, पर जैसे जैसे मनुख दे छिद्र वधदे गए, जख्म वधदे गए, पट्टियां भी वधदियां गईयां, और जब सारा ही शरीर जख्मी हो गया तो सारा शरीर पट्टियां नाल भर गया, कपड़े नहीं पहने हुए, जख्मां दे उत्ते पट्टियां बनियां होईयां ने। हकीकत यह है, हमां तन दागदार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। यह सूफी संत कहिंदा है, रोम रोम जख्मी है, किथे किथे मैं पुंबा रखा ते पट्टी बन्ना, ते जे मैं पट्टियां इतनियां बना रोम रोम दे उत्ते, ते पट्टियां ते मेरा लिबास बन जाणगियां, पट्टियां मेरा पहरावा बन जाणगियां। गुनाह नूं ढकण लई जो कपड़े पहने, वो कपड़े लिबास बन गए, वो कपड़े फैशन बन गए, वो कपड़े समाज दा अंग बन गए। वरना गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, यह एहसास पशुआं च नहीं पैदा होया, विस्माद नांगे फिरे जंत। महाराज कहंदे ने, मैं ते विस्माद हो जाना, पशु नंगे ही घूम रहे ने, इना दी नगनता लोभ दी प्रदर्शनी नहीं करती, इना दी नगनता हंकार दी प्रदर्शनी नहीं करती, इना दी नगनता वासना दी प्रदर्शनी नहीं करती। मनुखता दे आदकाल दे मनुख जद निर्दोष सी, इतना ही निर्दोष जैसे कि पशु ते पक्षी ने, कपड़ियां दी लोड़ नहीं सी। दोष वधदे गए, कपड़े वधदे गए, सहजे सहजे समाज दा हिस्सा बन गए कपड़े। जो कपड़े पहन रहे है भले मानस है, निर्दोष है, हुण नंगा दोषी कहलाण लग पे। इस वास्ते दोषी मनुख नूं असीं कह देने आ, बड़ा नंगा मनुख है, इह ते बड़ा नंगा है। कमाल दी गल, एक दौर ऐसा लंघिया, इह ते बहुत गुनाहगार है, सब कुछ ढक के रखे है, ढकया होया है, परिभाषा बदल गई, इह ते बहुत नंगा है, इह ते बहुत नंगा है। वक्त दा तकाजा, समय दा प्रभाव। तो इह शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मरदाने दे प्रति उच्चारण कीता है। कल कलवाली काम मद मनुवा पेवन हार। एक कल आम पर चलता है, शराबो कबाब, कबाब नाल शराब जुड़ गई, शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे, शराब और कबाब। लगदा है कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है, अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे, शराब और दुध, शराब और दही, शराब और घी ऐसा नहीं कहंदे, जबकि सारिया चीजां खाण वालियां। शराब और कबाब, कबाब नूं शराब चाहिदी है, शराबी नूं कबाब चाहिदा है। इन्हां दोहां दा चोली दामन दा साथ है, और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने शराब दी गल कर रहे ने, कबाब दी गल कर रहे ने। खाणा है कबाब जरूर खा, पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनूं बनाण दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी,
پر جیڑی میں بنان دا ڈھنگ تینوں دسدا ہاں او پی بن شرابی بن کبابی ایسا شرابی ایسا کبابی کہ پرماتما بھی تینوں سینے نال لان تے مجبور ہو جائے کسے وقت ستسنگ نو میں خانہ کہا جاندیا سی اج تے کھیڑی کچھ ہور ہو گئی سلسلہ کچھ ہور ہو گیا دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے اے یگ کلال ہے اگر اے کلال ہے تو اس دے کول شراب کیڑی ہے کل کل والی کام مد اس دے کول کام دی شراب ہے تم کہیت ہو جگت گرو سوامی ہم کہیت کل جگ کے کامی دھن بھگت رویداس جی مہاراج ہے پربھو تو جگت دا سوامی اسی اس یگ دے کامی تو تال مل کس طرح بیٹھے ایک دور ایسا بھی لنگیا ہے ہر پاسے دھرم دی پردرشنی سی دھرم دی نمائش سی باروں بھی ڈل ڈل کے دھرم پیندا سی گل دے چمال آئے ہتھاں چمال آئے گھر دے چمالاں لٹکیاں ہوئی نے گرنتھ پئے نے تمام دھارمک ساز و سمان نال گھر سجے ہوئے نے اور گھر دے چ بھی جا کے ایسا پتا چلدا سی جیسے مندر ہے دھرمشال ہے دور بدلیا گھر وچ بار بن گئی گھر وچ بوتلاں آ گئیاں گھر وچ ویشیالے بن گئے حیرانگی دی گل پہلے گھر مندر سن گھر دھرمشال سن ہن تے بہتے دھرمشالے بھی کسی حد تک میں خانے نے برشٹاچار دے اڈے نے دوراچار دے اڈے نے دور بدلے ہے سمے دا پرواؤ مہاراج کہندے نے کلال ہے اے یگ اور اے بنا رہے ہے کام دی شراب زیادہ چرچا اسے دی ہے زیادہ یہی دیکھیا جا رہا ہے ٹی وی تے اخباراں وچ اشتہاراں وچ طرح طرح دے میگزین طرح طرح دے گندے ناول جنسیات نال بھریاں ہیاں کہانیاں ہر پاسوں اجاگر کام دی پردرشنی کام دی نمائش آخر منخ کل جو کچھ ہوئے گا اسے دی پردرشنی کرے گا آخر منخ کل جو کچھ ہے وہی بار پرگٹ کرے گا کامی کام جیون دی ایک وقتی لوڑ ہو سکتا ہے کام جیون نہیں ہو سکتا لوڑ کتئی جیون نہیں ہوندی اس نو جس آلمانہ ڈھنگ نال دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بیان کیتا ہے آپ دے سامنے رکھا پنکج فاتے پنک محمد گنفیا انگ سنگ ارجھائے بسرتے سمفیا پنکج پنک کہندے نے چکڑ نو پنکج پنک دے چو جمیا چکڑ دے چوں پیدا ہویا پنکج پنک نے جنم دیتا ہے چکڑ نے جنم دیتا ہے پنکج تو چکڑ کس نو جنم دیندا ہے چکڑ ایک چوٹی دے پھل نو جنم دیندا ہے جس نو کمل کہندے نے جس نو سورب کہندے نے جس نو کنج کہندے نے جنو پدم کہندے نے جنو سارنگ کہندے نے جس نو بارج کہندے نے دھارم گرنتھاں دے غالباً اس دے 18 نام نے اور یہ دھرم دا پرتیک ہے اگر کوئی دھارمک منکھ ہے تو کہہ دیتا جاندہ ہے تے کمل دی طرح بھارت دے مندراں دے گنبد کمل نے بودھ بھکشو جد سویرے سویرے بھکشا لئی چل دے نے حد دے کمل دی پنکھڑی لے کے تاکہ احساس رہے وچر رہے ہیں بازار دچ گلیاں دچ کمل دی طرح رہنا ہے ڈبنا بھی نہیں بھیجنا بھی نہیں
महाराज कहने पंकज फाते पंक, जो पंक तो जमया सी चिक्कड़ तो जमया सी, महाराज कहने चिक्कड़ी ची फंस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंकज पंक दे फंस के रह गया। कदी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने, रुक जांदे ने, पानी नीवा होण लग पैंदा है। और इतना नीवा कि चिक्कड़ दिखाई देण लग पैंदा है। और वो कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया, पानी दे आसरे ते बहुत उच्चा उठिया सी, बहुत उच्चा उठिया सी, नीवा चला गया, थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई, चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया। और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया, कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक, महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ विच उलझे है अपनी सुगंध ही भुल गया, अपना स्वपन ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है, अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया, चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया, काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फंस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। काम तो जमया ए जीव काम दे च ही फस के रह गया। चारों पासे अज नाटक फिल्मा मैगजीन इश्तियारी दुनिया अखबारी दुनिया टीवी दी दुनिया रेडियो दी दुनिया समाजिक दुनिया राजनैतिक दुनिया हता के धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी कारण ये जड़ा युग है ये कलाल है। ऐ दे कोल शराब यही शराब है। मनुखा नू किसे होर सरूर दा पता ही नहीं, किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने और काम प्रबल नशा जिस दे मनुख बेसुरत मनुख बेहोश। एक गल वखरी है कि इतना खुल के इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया लिखिया नहीं गया। और जद किसी ने कुछ लिखिया है तो उस ग्रंथ नु धर्म ग्रंथ नहीं आखिया गया। जद कोई बोले है तो उन्हां बोला नु धार्मिक बोल नहीं आखिया गया। हद हो गई। जिस तो जीवन जमे है उस मन दे बोल इनू एक पासे रख दईए धर्म का हिस्सा ना मानिए तो फिर ये इंज हो जिवें कह दईए जन्म ही नहीं होया या जिथों जन्म होया असी इस नूं मनदे ही नहीं। जीवन उदों सफल हो जांदा है कि जम्मे काम दे चां ते लीन होवे राम दे च। यात्रा सफल हो जांदी है। चिक्कड़ तो जमे है पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे। काम तो जमे है पर ए काम ते पदार्थां दोहां तो उच्चा उठे। पानी तो भी उच्चा उठे। कई दफा जोर नाल वधिया होया पानी भी डुबो के रख देंदा है, उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है,
अचानक सता मिल गई है, प्रभुता मिल गई है, बड़ी तेजी दे नाले धन संपदा आई है, नहीं संभाल सकया, गर्क हो गया, डूब गया। आहिस्ता आहिस्ता जब सरोवर दे पानी पैंदा है, आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठता रहिंदा है, पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति दे अपने आप नू तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे, बड़े तीबरता दे नाल पानी वद्दा जा रहा है, उच्चा हो रहा है, और इसी तीबरता दे नाल ओ अपने आप नू उच्चा कर सके कठिन हो जाता है, औखा हो जाता है। काम ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है, वेच रहा है, पी रहा है, पिला रहा है। कल कलवाली काम मद मनुआ पीमण हार

ऐसो कर सने आसा मन से सदन सबै कर समझो मन ही माहे उदासा। इतनी गलती स्पष्ट हो गई कि कलगीधर ने भी कबूल कर लिया कि सन्यासी होए बिना परम पद की प्राप्ति नहीं है, अकाल पुरख की प्राप्ति नहीं है। तो सन्यासी कौन आंदा? उदासी ही सन्यासी आंदा, दूसरा नहीं आंदा। मन ही माए उदासा, जो उदास नहीं उत्थे सन्यास कादा। उदासी ते सन्यासी बिरती दोवें कठियां जुड़ियां हुई ने। उदास मनुख सन्यास नु ग्रहण कर ही लैंदा है। उदास उदास मनुख लई ए जीवन असार प्रतीत आउंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी ऐसा कहा है, जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी कर दी ताकि मैं थोड़े अंदर कोई फिजूल का तर्क ना पैदा हो जाए। और कई दफा हैरानगी भी आती है, जो इस मंजिल दे राही भी नहीं, सूझ भी नहीं, समझ भी नहीं, वह भी अपनी राय देंगे, हैरानगी आती है। और गजब की गल है कि धार्मिक दुनिया विच उन्हां लोकां ने बहुत बड़ा नुकसान किया है जो इस मार्ग के पांदी भी नहीं, इस मार्ग का कोई अनुभव ही नहीं, लेकिन राय देंगे ने अपनी अपनी राय देंगे ने। बड़ी कीमती राय कहते हैं साड़ी, ये बिल्कुल सही है। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, सन्यासी ते उदासी गिरती दोवें कठियां ने। उदासी सन्यासी होंदा है लाजमी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे। संसार तो उदास होके मैं जिस दर की तलाश कर रहा, कोई मैनू दसे वो दर कित्थे है, उस परमात्मा का वासा कित्थे है। उदास होके मैं जो है तलाश कर रहा। गुरु नानक देव जी महाराज के वड्डे साहिबजादे सिर्फ सिख जगत विच इतना ही किंतु परंतु है कि उन्होंने गुरु नानक दी एक दो थावां ते वचन नहीं मनिया, हुक्म अदूली की गई। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है कि यह जन्म तो पुरुष सन्यासी सी, उदास सी। इसने जो पंथ नूं भी बनाया जिहड़ा पंथ उदासी पंथ, उदास जन्म तो ही उदासी सी। गुरु प्रताप सूरज दे ते ऐसा लिखा है, कन भी पाटे हुए सन जन्म दे समय। प्रोता ने कह दिता है ते कोई महा जोगी है, कोई महा ऋषि है। और वाकई इतने वड्डे ऋषि दे घर किसे ऋषि नहीं आना सी, और किसने आना सी। जन्म तो ही उदास। और गालबन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक यही उदासी नानक पंथ का बहुत वड्डे पदर ते सारे भारत विच प्रचार करते रहे, काबल कंधार विच भी। अज भी जो काबल कंधार विच सिखी है, गालबन 1 लाख के करीब सिंह ने काबल, गजनी, जलालाबाद, खोस्त, हरात, कंधार, बहुत सारे गुरुद्वारे ने बड़े वड्डे वड्डे शानदार, वो जो सिखी है उदासियां भी फैलाई हुई, उन्हां दा प्रचार सी, उन्हां दे धूने भी बने हुए ने। बाबा श्री चंद दे 5-7 गुरुद्वारे बने हुए ने, उन्हों श्री चंद दी धर्मशाल कहिंदे ने, बाबा श्री चंद दी धर्मशाल। फ्रंटियर विच भी काफी सन, ते लहिंदा पंजाब जो लाहौर तो परे दा पंजाब सी, इत्थे भी उदासियां दे डेरे बहुत ज्यादा सन। फिर जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, यह 8-8 तीर्थां दे उत्ते जिहड़े अस्थान सन, यह भी उदासियां दे सन। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके गुरु नानक पंथ का यह प्रचार करते सन, यह भी मैं अर्ज कर गया। यह सिख जगत के आदि मिशनरी सन, पहले मिशनरी, इन्होंने ही प्रचार किया। अकाली लहर तो पहले ननकाणा साहब होर सारे वड्डे वड्डे अस्थान इन्हों को सन। बदकिस्मती ऐसी हुई कि सिर्फ 2% उदासी भ्रष्ट हो गए, 2%, 98 ठीक सन।

ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਕੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਸਨ 58-59 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਰੀ ਜਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹੀ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਜਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ। ਇਹ ਜਪ ਜਾਪ ਜਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਗਿਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬੈਰਾਗ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਬੈਰਾਗ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ 3-4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ, ਇਤਨੀ ਸੋਚਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
चौथा इस संसार दिस जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदास बंदे की जिसकी संसार दे चजे पूर्ति नहीं हुई, एक निक्की जी आसा बनी रहती है, चलो अज पूर्ति नहीं हुई कल हो जाएगी, ये पूर्ण तौर पर निराश नहीं होता। पर जो निजी सोचने करके है वो तो पूरा उदास हो जाता है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन दीवाने गालिब, हालांकि संसारी पद्धर का शायर है इश्क मिजाजी, अजे हकीकी दे नेड़े नहीं गया, लेकिन कहिंदा है इस दुनिया च मैं जी के की करा, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। कहिंदा सारा संसार बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नादान लोग, इन्हां नाल मैं किस तरह जीवां, सवेरे खा लेना शामी खा लेना कल फिर खाना, ए इसे तरीके नाल जिंदगी बतीत करी जाना। गालिब कहिंदे ने ते मैनूं इंज लगदी है जिवें मशीनी जिंदगी है, मैं इस नाल जीवन नूं राजी नहीं, इते बचकानी खेल है। बाजी चाहे इतफाल, इतफाल कहिंदे ने बच्चे, तिफल कहिंदे ने बच्चे नूं, इतफाल बच्चियां दी जमा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। कहिंदा दिन रात ए बच्चियां दा खेल हो रहा है, एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। औरंग कहिंदे ने तख्त जिदे उते बादशाह बैठता है, तख्त सुलेमानी बच्चियां दा खेल प्रतीत होंदा है। जिस तख्त लई दुनिया इतना संघर्ष कर दी है, इतना लड़ दी है, गालिब कहिंदे ने इस ते बैठ के मैं खुश नहीं हो सकता, इते बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आ गए, गालिब कहिंदा हजरत ईसा दे मौजे भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। वो किसे अंधे दे सिर ते हथ रखदा है, उन्हों सुजाखा कर देंदा है, किसे बीमार दे सिर ते हथ रखदा है तंदुरुस्त कर देंदा है, किसे मुर्दे दे सिर ते हथ रख देंदा है तो जिवा देंदा है। गालिब कहिंदे है जिसनू जिवा दिता है क्या फिर नहीं मरिया, जे फिर मरिया तो बच्चियां दा तमाशा करदा रहा और की। कहिंदा मैं ईसा दे नाल भी जी नहीं सकता, ये भी बचपना है, मैं तख्त सुलेमानी ते भी बैठ के जी नहीं सकता, ये भी बच्चियां दा खेल है, और मैं संसारी मनुखां दे नाल भी जी नहीं सकता, सब बच्चे ने। जद मनुख की सोचनी बड़ी बुलंद हो जाए, यकीन जानो आम मनुख उस बच्चे प्रतीत होने लग पेंदे, बिल्कुल बच्चे। गालिब कहिंदा मैं जीवां ते किस तरह जीवां, मेरे लिए जीवना बड़ा औखा है। हुण इस तरह का मनुख या ते जीवन शैली नूं बदले या इस जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे या मिटाण दी कोशिश करे, तीन तरीके ने, या ते जिंदगी नूं बदले या जिंदगी नूं मिटावे या जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे। इसने तीसरा तरीका चुन लिया, शराब पी के अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करदा रहे, सवेरे पींदा है दोपहरे पींदा है, नशा टुटन ही नहीं दिंदा। इतना अजीम चिंतक, इतना गहरा दार्शनिक हर वक्त नशे च रहिंदा है, और हालात इत्थे तक पहुंच गए, बाल बाल करजाई हो गया, अंग्रेजां दी हकूमत हो चुकी सी, बहादुरशाह नूं रंगून दी जेल विच कैद कर दिता सी, ये दरबारी शायर भी सी बहादुरशाह दा, तो अंग्रेजा ने इस नूं सियाणा चिंतक दार्शनिक जान के उस जमाने च 84 रुपए इसकी माहवार पेंशन बन दिती, और बहुत सन 84 रुपए उस जमाने दे,
पर इस सारे दी शराब पी जांदा सी, सारा दिन पीनी, नशा टुटन ही ना देना, पीनी पिलानी बस इसे चीज जो है हर वक्त गायब रहने लग पे। हालात इत्थे तक पहुंचे है, मुफलसी, बाल बाल करजाई हो गया। अज बेगम आके अगों रोई भी अज मैं थोड़े लिए खाना भी नहीं बना सकती, घर विच कुछ भी नहीं है, और कोई बाणिया कोई दुकानदार मैनू उधार देने नू तैयार नहीं, ते थानू जो कुछ मिलता है पी लेंदे हो। अद्धा हिसाब किताब मेरे हवाले करो, अद्धी रकम ते मैं कम से कम घर ते चला सका, थोड़े लिए रोटी दी दिक्कत ते ना होए। वक्त दा इतना अजीम मनुख रोटी तो भी आतर हो गया सी। घरवाली नू रोंदे होया ते मजबूर हालत दिच देख के गालब कहिंदा, अच्छा खुदा दी कसम हुण जद पहली तरीक आवेगी 84 रुपए मिलणगे, अद्धे तैनू दे दें, अद्धे तेरे। खुश हो गई बेगम, उसने कह दिता फिर मैं 2-3 महीने च सारा उधार भी ला देंगी, घर भी ठीक चलेगा, तुसी अद्धे मैनू दे दिता। खैर ज्यों द्यों करके इसने दिन टपाए, पहली तरीक आई, घरों बड़े सोहने ढंग नाल बेगम ने विदा कीता, और उड़ीक देच घर दी चौखड़ ते ही बैठ गई, हुणे गालिब आएगा। दोपहर हो गई नहीं आया, दोपहर ढल गई नहीं आया, शाम पै गई नहीं आया। दुखत होई, मायूस होई बेगम। ज्यों सूरज ढलिया थोड़ा जिहा हल्का हनेरा पैण लगा, लड़खड़ांदा होया गालिब आंदा होया दिखाई दिता है। 10 खचरां दे उत्ते शराब दियां बोतलां लदियां हुई, इस तरह ही करदा हुंदा सी, फिर दिन रात पींदा रहिंदा सी। घर दे खचरां बूहे ते आ गईयां, शराब दियां लदियां हुई, आप भी लड़खड़ांदा होया जारो जार फुट के रो पई बेगम। और ए बेगम ने आख्या, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी कि अद्धी माया दे देंगा, कि तुसी सारे दी शराब ले आए, और मैं महीना किस तरह लगाऊंगी, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी। गालिब कहिंदा है, उसे खुदा ने मेरी कसम तोड़ दित्ती। किस तरह? कहिंदा जद मैनू 84 रुपए मिले ना, मैं बिल्कुल घर दी तरफ आ रहा सी, 84 दे 84 तैनू देने सन, पर करां की, रस्ते च खुदा दा घर पै गया, मस्जिद पै गई, मौलवी वाज दे रहा सी। असी कहने कथा करनी हो, कहने वाज देन, मौलवी वाज दे रहा सी, तो मैं सोचिया चलो खुदा दी गल भी अज सुन ली है। कहिंदा है मौलवी सारे स्रोतियां नू निमाजियां नू मुतासर होके कह रहा सी, सारियां नू मुखातब करके, कि रोजी दहिन खुदा है, एदी चिंता नहीं करनी चाहिदी, राजक रहिंद खुदा है, एदी फिक्र नहीं करनी चाहिदी। कहिंदन बेगम जद मैं ए सुनिया, रोजी देहिंद राजक रहिंद खुदा है, तो मैं ते फिर शराब खाने ही चला गया, सारी शराब खरीद के ले आया। रिजक दी चिंता खुदा करेगा, शराब दी चिंता मैं आप कर ली, क्योंकि खुदा ने करने ही नहीं सी। और जारो जार गालिब भी रो पिया, कहने लगा इतनी उदासी च मैं नहीं जी सकता, तुम बहुत मजबूर करेंगे मैं खुदकशी कर लवांगा, मैं नहीं जी सकता।
उदासी का इतना बोझ मैं नहीं चुक सका। इतना क्यों उदास? बहुत सोचे है, बहुत सोचे है। और जितना सोचने वाला मनुख होगा, जो जितना दिमागी तल ते जीण वाला मनुख होगा, संसार नाल तालमेल नहीं बैठेगा, उदास हो जाएगा। कहते पशु उदास नहीं आते, सोचते ही नहीं। बच्चे उदास नहीं आते, इतनी सोच समझ नहीं आना को। मूड बंदे उदास नहीं आते, दिमाग के तल ते नहीं जीते। जितनी सियाणप की मिकदार जिस को जितनी ज्यादा होगी उतना ही उदास होगा, लाजमी है। उदासी बिरती सियाणेपण की पहचान भी है, पर इस उदासी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। चलो इस नूं भुलाओ, शराब पी के इस उदास बिरती नूं भुलाओ। कुछ ऐसे भी ने कि उस उदासी की हालत विच इतने निराश हो जाते ने, आत्महत्या करने की भी सोच लेंदे ने, खुदकशी। दूर क्यों जाओ? हकीम मोमन खान मोमन जैसा सियाणा बंदा भी कहता है, मैं भी सोचिया सी मरण का, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कहता सोचिया सी मैं खुदकशी कर लवा, मर जावा। इतनी उदासी च की जीवना, इतनी निराशा दिच की जीना। पर एकदम ख्याल आ गया, जे मर के भी मैनु सुकून ना मिलिया, यही उदासी पल्ले पई, तो फिर मैं की करांगा। इस वास्ते इरादा बदले है। तो मैं अर्ज करा, उदास बंदा तीन कारना करके आंदा है, या ते कथा कीर्तन चोट कर जाए, बाणी दा पाठ करदा पै शब्द ने चोट कर दिती है, उदास हो जाएगा लाजमी। या खुद बहुता जहीन होवे ते हर वक्त सोचण दे तल ते रवे, उदास हो जाएगा। या कोई संसार तो चोट लग जाए, बहुत गहरी चोट लग जाए, कोई अजीज मित्र अकारब चलाना कर गया, दिवालिया हो गया, बहुत वड्डा नुकसान हो गया, बेपति हो गई है, बेस्ती हो गई है, उदास हो गया, निराश हो गया। ये तीन मूल कारण ने मनुख दे उदास होण दे। या ते शब्द चोट कर जाए, या कोई संसार तो चोट लगे, या खुद दी सोचनी बड़ी प्रबल होवे और हर वक्त दिमागी तल ते जीवे, तो उदास बंदा करीबन करीबन इस ढंग नाल जीवेगा नहीं। या ते जिंदगी नूं बदलेगा, या जिंदगी नूं मिटावेगा, या जिंदगी नूं भुलावेगा। भुलाण दा तरीका है शराब, मिटाण दा तरीका है खुदकशी, और बदलन दा तरीका है जप ते जाप। इन्हां तिन्हां दे चों कोई इक ते उसनूं अपनाना ही पएगा, जप जाप या शराब या आत्महत्या, एक तरीका ते अपनाना ही पएगा। और मैं अर्ज कर दिया, औखे ना होना, इन्हां तिन्हां दे चों जिसने एक नूं भी नहीं चुनिया, गुस्ताखी माफ, ना शराब नो, ना खुदकशी नो, ना जप जाप नो, ये अजे मूड है, दिमागी तल ते नहीं जी रहे। इतनी मर्ज कर, अजे सोच विचार वाली गल कोई नहीं है, अजे दार्शनिक नहीं है, चिंतक नहीं है, अजे इसकी सोचनी कोई बहुत गहरी नहीं है, ना जीवन बारे ना संसार बारे। जैसे संसार बारे गालिब ने सोचा, जैसे इस जिंदगी बारे गालिब ने सोचा, कहने कि ये धौकड़ी की तरह हर वक्त श्वास लई जाने और कढ़ी जाने, क्या यही जिंदगी है? तो मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया। खुद नूं खत्म भी ना कर सकिया, खुद नूं बदल भी ना सकिया, खुद नूं भुलाने की कोशिश करन लग पिया। पी गए ये सदी बहुत सियाणी सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है, कदम कदम ते स्कूल कॉलेज, और जितनी सियाणप बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लगता है।
ਲੋਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਸੋਚਦਿਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼। ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਪੰਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਸ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਉਦਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ ਔਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਉਸਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਏ? ਜੈਸੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਇਸ ਬਚਕਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਤ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਰਅਸਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਸੋਚਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ,
या जे कथा कीर्तन इस दे हिरदे नो छू नहीं गया। संसार तो जड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवां, जद मनुख उदास होंदा है लाजमी नहीं ये अपने आप नू बदलन की कोशिश करे, हो सकता है अपने आप नू खत्म करने की कोशिश करे। खतरा है, बहुत वड्डा खतरा है, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, कौन कर देने जो चोट खा जाने। और कहने नहीं जीवना की करना है जी के, इतने निराश हो जाते ने, इतने उदास हो जाते, जीवना औखा हो जाता है उन्हां लई, और खुदकशी कर लेंदे ने। हां 5% ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप नू बदलन की कोशिश करते ने, जैसे कि राजयोगी परतरी, ये योगी बनया ये संत बनया कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह के पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं इसनू चोट घरों लग गई और इसने गल नू छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है उहदे च कहिंदा मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस दिता है, जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनदा सी, ते मेरे उपर असर पै गया ते मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रती ना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह की ना, दृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो पिंगला इसकी चहेती राणी सी। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज्यादा सी, दो तीन शब्द भरतरी के प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, जो मेरे चित दे हर वकत सी, मैं कदी जिसन भुलाया ही नहीं, उस दे चित दे मैं नहीं सी। जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, मेरे चित दे पिंगला सी हर वक्त, मैं उसनु याद कीता है, पर पिंगला दे चित दे मैं नहीं सी। वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, उते गनका बनी हुई, उते परश पुरश दा जो है उसके मन दे चिंतन ते उसका संग। परतरी कहिंदा जिस दिन मैनू पता चलिया कि जिसनू मैं प्राणा तो भी ज्यादा प्यार कीता, हर वक्त याद कीता, उस दे चित दे च मैं नहीं हां, वो आन उपमान के संग रति फुन ता मन में गन काग्रह कीना, दृग है अबला ब्रित कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना। ऐसी स्त्री ते लानत जिसका पति छत्रपति राजा होए और वो अपने चित दे उसनू थां ना दे। ते भरतरी कहिंदा मेरे ते भी लानत कि मैं जिंदगी दा मकसद एक स्त्री ही समझ ले। ये कहिंदा मेरे ते ओ मोए अधिकार, मेरे ते भी लानत, ओ मोए अधिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इस तरह की रीत मैं छोड़ देती है, राजा होंदे होया जोगी हो गया, नवी जिंदगी की तलाश, ये जीवन नहीं चाहिए, ये संसार मैनू नहीं चाहिए, कुछ होर दुनिया की तलाश। गोरख कहिंदा कोई होर दुनिया भी है तो उसका चेला बन गया, वो जिहड़ी होर दुनिया है मैं उत्थे वसना इस दे च नहीं, वो जिहड़ा होर जीवन है मैनू वह चाहिए है, ये नहीं, मैं उस दे च जीवना है। ये घर तो ही चोट खा गया, भाव संसार तो ही चोट खा गया। ऐसा भी आउंदा है कि घर तो संसार तो चोट खा के
कोई जोगी बन गया, संत बन गया, गुरुमुख बन गया, भगत बन गया। और शब्द दा चोट यह तो लाजमी 100% वह संत बनेगा, लेकिन संसार तो चोट लगी है लाजमी नहीं कि संत बने, भगत बने, परमात्मा की तलाश करे। हो सकता है खुद नूं खत्म करने की कोशिश करे। और जो बहुत सोच सोच के उदास हो गया है, बहुत उच्चा सोचे है, बहुत गहरा सोचे है और उदास हो गया है, लाजमी नहीं ये भी संत ते भगत बने। हो सकता है ये अपने आप नूं भुलाने की कोशिश करे। बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर दिमागी तल ते जीण वाले करीबन करीबन 99% शराबी ने 1% नूं छोड़ के और रज के पींदे ने। किसी के ज्ञान दे नाल भरी हुई कोई वड्डी किताब पढ़ के, उदियां कवितावां नूं पढ़ के, उदा दर्शन ते फिलसफा सुन के किधर इस चक्कर च ना पै जाना कि ते आसमान दा वासी है, इतने सतवें आसमान ते रहिंदा होवेगा। नहीं, कदी खोज करोगे तो किसी पब च मिलेगा, लड़खड़ा होया मिलेगा। मैं 1% दी जो है गल करने हैं, वो शायद बचे हुए ने। एक बड़ा बुलंद पाया हिंदुस्तान दे शायर सी फिराक गोरखपुरी, जिन्हों सारा मुस्लिम जगत हजरत करके पूजदा सी, उंज हिंदू सी। राम नारायण फिराक गोरखपुरी 50-60 किताबां दा लिखा रही, बड़ा अजीम चिंतक। दिल्ली लाल किले विच 26 जनवरी वाले दिन पंजाबी कवि सम्मेलन होंदा है, हिंदी कवि दरबार होंदा है और उर्दू दा मुशायरा होंदा है। वारी वारी एक एक दिन, और जिन्नियां साहित्यक रुचियां दे मालक लोग ने वो सारे पहुंच दे, लखां दा उत्थे इकट्ठ पहुंचदा है। हिंदी कवि सम्मेलन विच, पंजाबी कवि दरबार विच और उर्दू मुशायरे विच। शुरुआत उर्दू मुशायरे तो आती है, पहले दिन उर्दू मुशायरा आता है, बड़ी दुनिया पहुंचती है। यह सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट भी आता है। रात के समय वक्त कट के मैं भी एक दिन टीवी के सामने बैठा फिराक गोरखपुरी नूं सुनन लई। ये 50 किताबां का लिखारी, इन्ना गहरा सोचने वाला, और इसकी सोचनी सत्ता आसमाना नूं पाड़ के भी अगे लंघ जाती है कि अज दे दिन की आखेगा, कोई बड़ी वड्डी नज़म सुनाएगा, बड़ी कीमती कीमती बोल। और जब अनाउंसर ने फिराक गोरखपुरी का नाम लिया कोई 11वें-12वें नंबर ते, तो मेरा पूरा ध्यान एकाग्र हो गया, भाई इसनूं सुनिए, एक एक लफ्ज इसका सुनिए। उदास होए बिना नवे जीवन की तलाश करनी बड़ी औखी है। जो इस संसार को उदास ही नहीं, निरंकार की किस तरह तलाश करेगा, मुश्किल है। और जैसे शब्द चोट कर गया है, उदास हो गया है, ये बंदा अगर मुसलमान है तो शरा का पूरा पाबंद हो जाएगा। अगर ये बंदा गुरुद्वारे आ रहा है तो सारी रैत वैत का धारनी हो जाएगा एकदम। और ये बंदा अगर हिंदू है तो पूरा कर्मकांड अपना लेगा फौरन। शब्द ने चोट कर दी, संग ने चोट कर दी है, तो जब सत्संग ने चोट की थी है तो ये अपने इष्ट का पूर्ण तौर पर बनने की कोशिश करेगा। अगर कोई हिंदू पूर्ण तौर पर कर्मकांडी नहीं होया, अजे सत्संग ने चोट नहीं की थी। अगर कोई मुसलमान पूर्ण तौर पर शरा का धारनी नहीं होया, यकीन जानो अजे नमाज ने चोट नहीं की थी, अजे कुरान की तलावत का कोई असर नहीं होया, कुछ भी नहीं। कि कोई पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी नहीं होया, अजे शब्द ने चोट नहीं की थी, अजे कथा कीर्तन ने कतई चोट नहीं की थी। ए, मन नूं एक पासे कर जांदा रहा, शब्द का तीर लंघ जांदा रहा, नहीं लगे। अगर लगता तो यह पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी हो जाता। अगर सत्संग ने चोट की थी है तो पूरा कर्मकांडी हो जाना सी इसने।
اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی. پانچ وقت دا پکا نمازی اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا, زکات دین والا, روزے رکھن والا, کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں, پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال, دو سال, پانچ, سات سال شرح دے چلنگے نے, کرم کانڈ دے چلنگے نے, رہت بیت دے چلنگے نے, لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی, نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے, اے بندہ شرح تو بھی اداس ہو جائے گا, اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. تے ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا, میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا, اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے اودی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے, دس سال ہو گئے نے, کیونکہ سوچن والا بندہ ہے, تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی, سوچتا نہ تے چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دے, موڑ نہیں کر دے, اوکھے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دے نے, جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے نے. تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے, اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دے نے. منخ پتر نال بیٹھ سکتا ہے, متر نال بیٹھ سکتا ہے, پتنی نال بیٹھ سکتا ہے, پتی نال بیٹھ سکتا ہے, کوئی کتاب چاہیے, ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے, ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے, منخ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے, سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منخ دوڑ رہا ہے کتوں, اپنے آپ تو بھجو, اپنے آپ تو بھجو, دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے, یہی کچھ ہے, دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی, دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے, اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا, وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکدے نے, مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کر دیا, وقتی طور پہ بلاؤن دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے, اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی, اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکدا. اور کیوں نہیں رہ سکدا؟ ایہدے کول کچھ بھی نہیں ہے, تاں ہی نہیں رہ سکدا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکدا ہے, بڑا مہان منک ہے, بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں اہدے کول کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی, اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی, چلو چل کے ساتھ دے دیئے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا, سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا, تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا, تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی, ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا, مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا, میرے تے رحم کھا, ترس کر, مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ٹھیک ہے, یہ بھی ڈنگ ہے, ایک بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیئے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے, انو کلا رکھ دینے تنہا, یا پہ ٹھیک ہو جائے گا. انو پانچ سات دن کلے ہیں رکھو, تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی امنگ, نہ کوئی ترنگ, نہ کوئی کھیڑا, نہ کوئی خوشی, نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے, سوائے دکھاں تو رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے, ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے, ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دے, تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے, بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, باقی وہ سنندا رہے گا, مشین دی طرح چلتا رہے گا, سنتے جانا, سب کچھ سنائی جائے گا, چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے, یقین جانا اوکھے نہ ہونا, بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں, یہ حقیقت ہے, بہت بڑی سچائی ہے.
कि मनुख नूं अपने दुख सुनाउण दा भी शौक आउंदा है, रस आउंदा है, बड़ा स्वाद आउंदा है। इस तरह की एक आदत भी बन जाती है और ऐसी आदत मनुख नूं इतना विगाड़ देती है कि किधरे किधरे फिर सुख नूं भी दुख दे च बदलदा है। ये भी मैं अर्ज करा, तुसीं आखोगे सुख नूं दुख दे च बदलदा है, हां मैं प्रत्यक्ष रूप च देखिया। बंबे तो मैं इंदौर जाना सी, दादर सिंह सभा दे च एक इंदौर दा ही सज्जन मिल गया। उन्हें कहा गैने जी असी बाई रोड जा रहे हैं, साड़ी कार, असी तीन आदमी ड्राइवर हाँ, ते पति पत्नी तीन, तुसीं नाल चलो, साडे रस्ता चंगा पास होवेगा, गल्लां बातां करदे जावांगे। तो मैनू कहण लगा रस्ते च बड़े पहाड़ पैंदे ने, हरियावल बड़ी है, सागवान का बड़ा जंगलात आएगा। मैं तो पता तो मैनू भी है, पर चलो जिस तुसीं कहिंदे इस तरह बना लैंदे आ प्रोग्राम। उस दिन का मेरा तलख तजर्बा है, ज्यों बंबे शहर तो गड्डी बाहर निकली उन्हें होके भरने शुरू किए होके। अगे मैं ड्राइवर दे नाल फ्रंट सीट ते बैठा, पिछे दोवें पति पत्नी बैठे, ते मैं हैरान होए ते होके इत जला के रख देगा, इंदौर तक पहुंचते पहुंचते। एक बेचैन बंदे कोल बैठो उहदियां तरंगां प्रभावित कर दियां ने, एक आनंद प्रसन्न चित मनुख कोल बैठो उसदियां तरंगां प्रभावित कर दियां ने। ते बड़ा बेचैन बंदा इस तरह ही होके भरदा है, इंदौर तक गया इतनी सारी कार नूं ही फूक के रख देगा, इन्ने होके इन्नी सड़ान इतनी जलन। मेरे को रहा नहीं गया, जैसे जलगांव दे नेड़े पहुंचे ते मैं पूछ लिया, मैं सरदार जी गल की है, मैं मैनू थोड़ी प्राइवेट जिंदगी ते मुदाखलत करनी नहीं चाहिए, पर तुसी इस तरह के हौके भरते आ रहे हो, मैं बेचैन हो गया और मैं सोची पै गया कि मैं ये सफर क्यों चुन लिया थोड़े नाल। गल की है पता मैनू की आखन लगे, गैनी जी एको ही दिन दे छे लख दा घाटा पै गया, एको ही दिन दे कल, तो कल दा मैं बड़ा बेचैन, बहुत परेशान। पत्नी बोल पई कहिंदी गैनी जी ये गल नहीं है, ये गलत कहिंदे ने, और उन्होंने समझाने लगी कम से कम गैनी उन्होंने नाल ते झूठ ना बोलो। तो कह लगी इन्हों चार लख का नफा होया, पर इन्होंने मिथिया सी कि दस लख मिलेगा, तो दस तो मिले नहीं, मिले चार है, तो हूं कल का कई जान छे लख का घाटा पै गया, छे लख का घाटा पै गया, ना आप आराम कर दें ना किसी होर, रोई जाते दुखी। मैं ठीक है दुख दुख प्रतीत हो वे, इस तरह के लोग तो हैं, पर कई नफे नु भी नुकसान दे च बदल देंगे, कई सुखा नु भी दुख दे च बदल देंगे, जीवना नहीं आउंदा। बहुत सारे लोग तो ऐसे ने सुख नु भी दुख दे च बदल देंगे, नफिया नु भी नुकसान दे जो है बदल के रख देंगे ने, जीवना अपना भी मुहाल कर देने दूजिया का भी, आदत हो जाती है। और फिर होके ही होके तो पुछो तो फिर दुखा की पंड खोल के जो है रखे, विस्तार सहित जो है बयान करे। तो खैर मनुख का अपने आप दे नाल जीवना बड़ा औखा है, पुलाण की कोशिश इतों ही जो है सिलसिला आरंभ होंदा है। तो हुण मुख्तसर मैं अर्ज करा, जो शब्द तो सत्संग तो चोट खा के उदास होया, लाजमी अगर ये सिख है तो पूरा रेतिया बैतिया होगा। मैं फिर दोहरावा, अगर ये मुसलमान है तो पक्का शरई होगा, पक्का शरई, हज ते भी जाएगा, रोजे भी रखेगा, पांच वक्त नमाज भी पढ़ेगा, जकात भी देगा, तलावत भी करेगा, सब कुछ करेगा, सुन्नत भी रखेगा। और जे ए हिंदू है पक्का कर्मकांडी होगा, 68 तीर्थां दे च इसने एक भी नहीं छड़ना, सारियां दा इशनान करके आएगा, इन्हें माघ का भी इशनान करना है, कुंभ का भी करना है, इन्हें सवेरे शाम गीता का पाठ भी करना है, इन्हें पूजा भी करनी है, इन्हें अर्चा भी करनी है, इन्हें बंधन भी करना है, इन्हें तिलक भी पहनना है, इन्हें जनेऊ भी पहनना है, इन्हें धोती भी पहननी है, ये पक्का कर्मकांडी बनेगा, ये पक्का रहित बैतिया बनेगा और ये पक्का शरई बनेगा।
लेकिन दिन बहुत हो जान ते बंदा सोचन समझण वाला हो।